सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक

0: ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रखेल। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a four-day visit to India on the 23rd of this month. More from our correspondent.
2: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will undertake a three-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. In the evening, the president will visit the Namgyal Institute of Tibetology in Gangtok. Tomorrow, President Murmu will visit Nathula Pass, where she will interact with soldiers deployed at Nathula. Union Home Minister Amit Shah will visit India's border regions over the next few days and hold security-related meetings. Mr. Shah reached Bikaner in Rajasthan last night. Home Minister will visit the BSF Sanchu border outpost this morning, where he will interact with the security forces personnel and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region in Bikaner. Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as the public health emergency of international concern.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे इस समय किए चारे वाले मत्स्य कार्य तालाब के तैयारी प्रबंधन विषय पर जानकारी संजीव मेहता से।

किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम इस समय किए जाने वाले मत्स्य कार्य, तालाब की तैयारी और प्रबंधन विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, इस समय मध्य वर्षा और गर्मी से मानसून के बीच का समय है। इस समय तालाबों के प्रबंधन में जो मुख्य बातें शामिल होंगे वो जल स्तर बनाए रखने की, पानी की गुणवत्ता की, पीएच और ऑक्सीजन की जांच की, चूना और खाद का सही उपयोग के साथ पूरक आहार पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही पुराने तालाबों में शैवाल और अवांछित खरपतवार को नियंत्रित करना और मछलियों को रोगों से बचाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। किसान भाइयों, ये सारे कार्य मत्स्य उत्पादन से जुड़े हैं। मत्स्य पालक को इस समय जल स्तर और गुणवत्ता बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस समय गर्मी के कारण पानी सूखने पर ताजी पानी डालें और ध्यान रखें कि पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। जरूरत हो तो कृषि चूना 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ आप तालाब में डालें। मत्स्य पालक भाइयों, तालाब में प्राकृतिक भोजन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि पानी हरा या गाढ़ा हो तो ये खाद न डालें। इसके अलावा मछलियों के आहार का खास ख्याल रखें। मछलियों को उनकी उम्र के अनुसार संतुलित पूरक आहार, जिसमें चावल की भूसी और खल्ली का मिश्रण शामिल है, उसे प्रतिदिन दें। इसके साथ ही मछलियों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिसके लिए मछलियों के रोगों की रोकथाम के लिए तालाब का पानी का आप हमेशा जांच करते रहें और रोगग्रस्त मछलियों को बाहर निकालकर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से उसे उपचारित करें। इसके साथ ही मत्स्य पालक किसानों को महत्वपूर्ण सुझाव ये दी जाती है कि वे मछलियों की वृद्धि दर की जांच करते रहें और यदि तालाब में बहुत अधिक जलीय वनस्पति हो तो ग्रास कार्प मछली का संचय करें। इस प्रकार हमारे मत्स्य पालक किसान इन बातों का ध्यान रखकर मछलियों और तालाबों को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन कर देश भर में 197.75 लाख टन उत्पादन हुआ था, जो कि गत वर्ष से करीब 106% अधिक था। तो इस प्रकार देश में मछली उत्पादन दिनों दिन रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, जिसमें आप भी अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें।

अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का सुविचार। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसीलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता ना करें, दोनों बदलेंगे जरूर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं हरिओम शरण को।

0: अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत, और इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस।
1: साठ सिक्स जीरो

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों

तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 7:20 का समय होगा लोकगीतों का और 7:35 पर आप सुनते हैं बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है सुबह के 7:50 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा। 8:45 का समय होता है फिल्म संगीत का। सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और आप सुनेंगे 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में एक ही गीतकार के रचे गाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं। 10:20 का समय होता है फिल्म संगीत का। सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर हम आपके साथ होते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर लेकर और 12:05 का समय होता है भावगीत का। 12:30 पर श्रोता सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर आप आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 2:55 पर श्रोता सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा। 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में ठुमरी। 3:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 का समय होगा फिल्म संगीत का और 5:02 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। 5:30 का समय होता है कल कारखाने का। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर श्रोता सुनते हैं झारखंड के लोकगीत। 6:30 का हमारा समय होता है कृषि जगत का और संध्या 7 बजे आकाशवाणी

रांची से प्रसारित किया जाता है प्रादेशिक समाचार, यहीं से आप सुनते हैं 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का और 7:45 पर आज के दिन आप सुनते हैं कार्यक्रम आलोक। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, यहीं से आप सुन सकते हैं रात्रि 9 बजे न्यूज एट नाइट। 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे हम आपके साथ होंगे आपके फोन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 11:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुगम संगीत में सुनवाते हैं गजलें। फनकार हैं भूपिंदर सिंह और मीताली सिंह।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह को। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश मिश्रा का गाया मैथिली गीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोक गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में आज आप सुनेंगे नजरुल गीती इंद्राणी सेन से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्राणी सेन से नजरुल गीत कार्यक्रम सुरांजलि में। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आप जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों में कृमि की समस्या। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह, जिनसे बातें कर रहे राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, बच्चों में कृमि की समस्या एक आम बात है। इस कृमि से क्या क्या उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है, किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह रेखराज। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बच्चों के पेट में जो कृमि होता है, इसका मुख्य कारण क्या है?
1: कृमि तो देखिए बच्चों में आमतौर पर पाया ही जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वयस्क में ये नहीं हो सकता। तो बच्चों में इसका पाया जाना आम बात है। उसका कारण आप ये कह सकते हैं कि बच्चों में हाइजीनिक कंडीशन जो है वो उतनी वेल मेंटेन नहीं होती है। तो इसमें बच्चा जो है कुछ भी सामान मुंह में डाल लेता है, बच्चा मिट्टी में खेलते हैं, तो ये सब चीजें हैं जिससे कि कृमि उसके अंदर जो एग है उसके वो एंटर कर जाते हैं और इससे बच्चा जो है इससे प्रभावित हो जाता है।
0: तो किस तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है?
1: शारीरिक समस्याएं, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है कृमि से पीड़ित है। बच्चे की भूख को आप देख सकते हैं कि बच्चा या तो कम भी खा सकता है या कई बार कृमि होने से भूख बढ़ भी जाती है। लेकिन बच्चे का विकास जो है वो प्रभावित होता है कि माँ बाप कहते हैं बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन इसका शरीर बहुत दुबला है। इसके अलावा बच्चे का पेट यदि देखा जाए तो पेट एक उभार रहता है जो नॉर्मल से कुछ अलग सा दिखता है। इसके अलावा जो चीजें है कि जैसे बच्चा सोए में मुंह से लार आती है, बार बार थूकने की आदत होती है, बच्चा सुस्त रहता है, इस तरह की सिम्टम्स को देखकर लक्षणों को हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है कृमि से पीड़ित है। या पेट दर्द भी होता है इसमें।
0: अगर कृमि की शिकायत काफी दिनों तक रहे तो उसके पेट में क्या असर हो सकता है? पेट के अंदरूनी हिस्सों में क्या कुछ खराबी आ सकती है?
1: पेट के अंदरूनी हिस्सों में तो खराबी आएगी ही। जब बहुत ज्यादा कृमि की संख्या हो जाती है तो कई बार जीवन मृत्यु वाले लक्षण भी हो जाते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है जो हमारी आंत है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो ये बहुत विकट समस्या भी हो सकती है। कृमि कई बार स्टूल के साथ भी पास हो जाते हैं और इस तरह से ये बनते हैं, जन्म लेते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन बच्चे का जो

0: स्वास्थ्य है इससे बहुत प्रभावित होता है, उसका विकास मानसिक शारीरिक दोनों ही प्रभावित होते हैं।
1: ऐसे क्या उपाय हैं जिससे हम कृमि से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं?
0: इसका उपाय तो बहुत ही आसान है, तो जैसा कि हाइजीनिक कंडीशन की मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले तो जरूरी चीज है कि बच्चे जब खाने के लिए बैठे तो अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करके खाना खाएं, खेलने के समय भी अपने आप को जितना साफ सुथरा रखें। इसके अलावा जो हम फल और सब्जियां खाते हैं, इसको जब कच्चा खाते हैं तो आजकल पानी की कमी है तो कई जगह गंदे पानी से भी सिंचाई हो जाती है, तो इस पानी के साथ भी कृमि के जो अंडे हैं वो सब्जियों और फलों के साथ शरीर में चले जाते हैं। फल या सब्जियां बच्चों को दे रहे हैं वो अच्छी तरह से धोई हुई हो, अगर जिसको उबाल के देना संभव हो उसको उबाल कर ही दिया जाए। गांव देहात में ऐसा आमतौर पर पाया जाता है कि बाहर आप बच्चे शौचालय के लिए जाते हैं, या घर में भी छोटे बच्चों को हम वैसे ही नाली वगैरह में बैठा देते हैं, तो ये भी एक तरह से अच्छी बात नहीं है। इसको ढंग से बच्चे को पहले ही सिखाया जाए कि शौचालय का उपयोग करना है, इससे भी ये इन्फेक्शन की चांसेस कम हो सकती है। फिर जो पानी की बात है, तो पानी भी गंदा पानी यदि पीते हैं तो उसके थ्रू भी कृमि के अंडे आ सकते हैं।
1: इस तरह श्रोताओं, आपने सुना कि बच्चों के पेट में अगर कृमि हो तो इसका मुख्य कारण गंदगी हो सकता है, इसलिए बच्चों में सफाई की आदत डालिए और जहां तक हो सके उसके खाने पीने की जो चीजें हैं उसे साफ सुथरा रखें और पूरी तरह से साफ करने के बाद ही उसे खाने को दें। डॉक्टर साहब, आपने उपयोगी जानकारियां दी, उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता बच्चों में कृमि की समस्या विषय पर। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर सुखविंदर सिंह और भेंटकर्ता थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के

0: अंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रूपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।

0: आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में मिला तीसरा स्थान। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी, राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल लू की चेतावनी। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि उनका मंत्रालय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। गिरिडीह परिसदन में अपने 3 दिवसीय दौरे के बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के शारीरिक और समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है।
1: अगर महिला बाल विकास विभाग की हम करें, सबसे पहले तो उन्होंने इसकी शुरुआत की महिलाओं का सशक्तिकरण, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.2 इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे बच्चों को स्वस्थ कुपोषण मुक्त किया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित ऑड्रे हाउस में आदिनिवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक मंच पर जोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिनिवास ऐप रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।
2: एक सोच हमारे सामने पेश हुआ है कि ऐप पूरे दुनिया भर में सभी लोगों को जोड़ पाए और जो विचारों का आदान प्रदान है, हो सकता है कि हम यहाँ कुछ सोच रहे हैं, कहीं किसी दूसरे देश में या किसी राज्य के किसी कोने में कोई एक नौजवान अपनी बात कह रहा हो तो उसे समझने का भी आज एक कनेक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा कदम आदिनिवास ऐप के माध्यम से यहाँ शुरू की गई है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐप के संस्थापक नितिन कुजूर और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वित्त और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य भर में आज से एक महीने तक विशेष महाअभियान चलाकर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामारी कर नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा बाजार में अनियमितताओं पर रोक लगाना है। रांची के कई वार्डों के पार्षदों ने उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात कर शहर की मूलभूत समस्याओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं को लागू करने की चर्चा की। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से आम लोगों तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। बैठक में महिला सुरक्षा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी पार्षदों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। धनबाद के सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर परामर्श और सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। सदर अस्पताल को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता योजना समेत अन्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह उपलब्धि हासिल हुई है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: जमशेदपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
4: शमशाद ने जो बाइक चोरी की वो अरुण मुखर्जी को जाकर ये देता था। अब वो उसको किस तरीके से आगे या तो उसको बिकवाता था या फिर कई बार डिसमेंटल करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ भी करता था। इस प्रकार की चीजें अभी तक की प्रारंभिक जांच में सामने आई है, हो सकता है कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर 5 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
0: राज्य भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पलामू, गढ़वा, छतरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में आज और कल लू की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ में वज्रपात का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
5: महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस के स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की R. रिताया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।
6: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पेट्रोल डीजल में हुई मूल्य वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 11 दिन में पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए हुआ महंगा। दैनिक भास्कर ने राज्य में बालू की किल्लत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है NTA ने गलतियों से नहीं ली कोई सबक। दैनिक जागरण ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उतारने के निर्णय की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में मिला तीसरा स्थान। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी। राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों जिलों में आज और कल लू की चेतावनी और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे इस सफर में स्वागत है आपका।

फूलों की खुशबू और सूरज की इन मखमली किरणों के बीच आज के इस संगीतमय सुबह में मैं निमिषा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं कहते हैं कि संगीत आत्मा की आवाज़ है और जब सुबह की शुरुआत सुंदर खूबसूरत गीतों से हो तो पूरा दिन जैसे एक खूबसूरत धुन बन जाता है।

0: फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यही पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलमर्ग में गोंडाला रेल रोपवे में केबल कार में फंसे करीब 300 पर्यटकों के सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रूपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने संबंध में जानकारी दी। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले, यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइली सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन

गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्रों गोकर्ण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और तमिलनाडु में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरंजना।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर। श्रोताओं, कुछ लोग शब्दों को लिखते हैं और कुछ लोग शब्दों से जादू करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम सुरंजना एक ऐसे ही जादूगर के नाम है जिन्होंने 90 के दशक से लेकर आज तक आपकी मोहब्बत को अपनी स्याही से सींचा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार फैज अनवर साहब के।

0: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657।

श्रोताओं, फैज अनवर साहब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके गानों में सादगी भी है और शिद्दत भी। आइए सुनवाते हैं एक ऐसा ही गीत

0: डॉक्टर आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: दोस्तों, मोहब्बत जब हद से गुजर जाए ना तो वो इबादत बन जाती है। फिर आंखें बंद हो या खुली, सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है।

दोस्तों, अल्फाज कम पड़ जाते हैं पर फैज अनवर साहब के गीतों का कारवां ख़त्म नहीं होता। चाहे वो साजन फिल्म के गाने हों या तुम बिन के नगमे, उन्होंने हर दौर को अपनी शायरी से सजाया।

0: आज के कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं, आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं दिल है की मानता नहीं, इम्तिहान, संघर्ष और तुम बिन। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, सोनू निगम और के एस चित्रा की थीं। संगीत निर्देशन था अनु मलिक, जतिन ललित और निखिल विनय का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना फैज अनवर के रचे गाने।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं बांसुरी वादन राग तोड़ी पर आधारित पन्नालाल घोष ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी पर आधारित बांसुरी वादन पन्नालाल घोष से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटुक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में से 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।

0: और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश जारी किए। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों पर हमले किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में साझा गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा होगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विनिर्माण संसाधन की उपयोगिता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में कमियों जैसे मुद्दों पर चर्चा निर्धारित है। श्री जयशंकर ने कहा कि वे बहुत आशान्वित हैं कि क्वाड बैठक उपयोगी और सफल होगी। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी आज दोपहर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपा जाएगा, जिसे नष्ट किया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में उपयुक्त स्थान पर नष्ट किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने भी अमेरिकी नेतृत्व वाले ढांचे के तहत अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील की। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में वर्ष 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाना है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने देश भर में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। ईरान के अधिकारियों ने 87 दिनों से अधिक समय से देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया था। खबरों के अनुसार अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान इन प्रतिबंधों ने आम नागरिकों की सूचना तक पहुंच को बाधित किया, साथ ही इंटरनेट पर निर्भर व्यवसायों को भी बुरी तरह प्रभावित किया।

0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइली सैन्य अभियानों में 600 से अधिक हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं। ये ताजा हमले दोनों देशों द्वारा 45 दिनों के युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति के बावजूद हुए हैं। हालांकि लड़ाई मुख्य रूप से दक्षिणी लेबनान में जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले, यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में श्री लावरोफ ने रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से बारिश को भी दोहराया, जिसमें अमरीका सहित सभी देशों को यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने राजनयिकों को तुरंत निकालने को कहा गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन की हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
1: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इस दौरान भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस निवेश का उपयोग सतत पर्यटन, बुनियादी ढांचे और जैव अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में किया जाएगा। इको इन्वेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत ब्राजील का राष्ट्रीय राजकोष निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बैंकों को कम ब्याज दरों पर ऋण देगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में जारी। WHO के इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश जारी किए। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नाव पर हमले किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे इस खूबसूरत सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे फिल्म उम्मीद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचनाकार थे शकील बदायनी और संगीत था रवि का।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम

आशा भोसले का गाया फिल्म वक्त का ये गीत आपने अभी सुना साहिर लुधियानवी की रचना थी, संगीत रवि का था। अब आइए सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सनम तेरी कसम से ये गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में हर जाए फिल्म से। निदा फाजली ने इस गीत को रचा है, धुन राहुल देव बर्मन का है।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म कभी कभी का ये गीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनवाते हैं फासले फिल्म से ये गाना। गीतकार हैं शहरयार, संगीतकार हैं शिवहरी, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म फासले के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास के खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगे और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरा होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो में से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से बात की और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इस बीच मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सतर्क रहने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों,

नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ ही हम शुरू करेंगे अपने दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों का सिलसिला। और आज नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में लेकर आए हैं आज के दिन विशेष से जुड़ी जानकारियां और फिर गीत संगीत के साथ ढेर सारी दिलचस्प बातें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की।

साथियों, आजकल ज़्यादातर बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ से लगभग दूर ही रहते हैं। मैदानों में खेलों की जगह वीडियो गेम्स ने ले ली है। घर पर बैठकर स्क्रीन पर वीडियो गेम्स खेलते हैं और खाते हैं फास्ट फूड। हाल ही में दिल्ली की 10 वर्षीय बच्ची का मोमोज जैसे फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से लीवर फेल हो गया। शरीर में जहरीले पदार्थों के संक्रमण के कारण मस्तिष्क में आई सूजन से बच्ची के दिमाग ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। याददाश्त पर पड़े दुष्प्रभाव से छोटी छोटी बातें भी उसे याद नहीं रही। ये इस तरह की कई घटनाएं अभी सामने आ रही हैं जो काफ़ी चिंतनीय हैं। चिंतनीय है कि नई पीढ़ी की भोजन शैली स्वास्थ्य ही नहीं जीवन के लिए भी जोखिम बन रही है। बच्चों के जीवन से जुड़े जोखिमों की सूची में खान पान की बदलती आदतें चिंतनीय हो चली हैं। घर के खाने के बजाय कुछ विशेष तरह के खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन से शारीरिक व्याधियां तो डेरा जमाती ही हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अस्वास्थ्यकर भोजन मूड स्विंग, चिंता और अवसाद का खतरा भी बढ़ाता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो जंक फूड खाने की आदत धीरे धीरे लत में बदल जाती है, जबकि कई स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ बनने वाले जंक फूड में पोषण के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इस उम्र में पोषक तत्वों की कमी बच्चों के सही विकास में बाधा बनती है। वसा, नमक और चीनी की अधिकता वाले ऐसे अधिकतर खाद्य पदार्थ मोटापे और कुपोषण का खतरनाक मेल साबित होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों की माने तो जंक फूड का सेवन बच्चों को मोटा और आलसी बनाने के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता भी कम कर रहा है। यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड की वजह से 10 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार हो गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौती बना मोटापा बच्चों में डायबिटीज़, हृदय रोग और दूसरी जानलेवा व्याधियों का जोखिम बढ़ा रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट भी चेताने वाली है। रिपोर्ट में बच्चों में मोटापे के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इतना ही नहीं, देश में आज 56% से अधिक गैर संक्रामक रोग सीधे सीधे भोजन शैली से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में आवश्यक है कि किसी तरह की बड़ी स्वास्थ्यगत हानि से पहले ही अभिभावक चेत जाएं, सतर्क हो जाएं। बच्चों को घर पर बने भोजन और खान पान की पारंपरिक आदतों से जोड़ने का जतन किया जाए।

दोस्तों, साइकिल हमारे देश में वर्षों से चलन में रही है। याद कीजिए, जब हम सब साइकिल चलाया करते थे तब बच्चों और बड़ों में भी मोटापे की समस्या इतनी नहीं थी, पर बीते कुछ वर्षों में इसका उपयोग गली मोहल्लों और सड़कों पर कम होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते भावों को देखते हुए हमें सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। साइकिल के उपयोग से पेट्रोल डीजल और पैसों की बचत तो होगी ही, साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। इससे प्रदूषण पर भी कुछ हद तक रोक लगेगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी साइकिल चलाने के लिए प्रेरित ज़रूर करना चाहिए।

0: तीर तुमने चलाया।
1: भाभी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में। संगीत निर्देशन था अनु मलिक का और शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की।

श्रोताओं, 26 मई का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में अपनी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है। भारत के लिए ये दिन अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक सफलता और आधुनिक राजनीतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दिन कई बड़े बदलाव हुए। आज ही के दिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी। 26 मई 1999 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। 1957 में मुंबई में जनता पॉलिसी बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई 26 मई को। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध हस्तियों का जन्मदिन भी है आज, जैसे 1945 में 26 मई को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बिलासराव देशमुख का जन्म हुआ। 1906 में प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार राम किंकर बैच का जन्म हुआ आज ही के दिन। 1983 में भारत के प्रसिद्ध पहलवान सुशील कुमार का आज ही के दिन जन्म हुआ। एक समय अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने ईरान के नादिर शाह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे ये भारतीय साम्राज्य से अलग हो गया। तारीख थी 26 मई 1739। सन 1999 में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 318 रन की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया था 26 मई को। अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले सिर्फ अमेरिका, रूस जैसे देशों का दबदबा था। इस क्षेत्र में भारत की प्रगति अप्रत्याशित थी। धीरे धीरे भारत भी अंतरिक्ष की एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभरा। आज का दिन भारत की अंतरिक्ष शक्ति के इतिहास में काफ़ी अहम दिन है। इसी दिन सन 1999 में भारत की अंतरिक्ष रिसर्च की संस्थान इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था।

बी प्राक विशाल ददलानी शेखर रबजियानी की मिली जुली आवाज़ों में फाइटर फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का और गीत रचना थी कुमार की।

बातें कर रहे हैं दोस्तों आज के दिन विशेष की। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में भी 26 मई का विशेष महत्व है, क्योंकि वर्ष 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था। दरअसल 26 मई 2019 को ही राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

श्रोताओं, ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर शहर और ग्रामीण मुस्लिम बहुल इलाकों में तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजारों में सेवई, कपड़ों और मसालों की दुकानों पर चहल पहल बढ़ी है, लेकिन इस बार महंगाई और भीषण गर्मी ने त्यौहार की रौनक जो है उसको कुछ फीका कर दिया है। दिन भर तेज धूप और उमस के कारण ग्राहक शाम ढलने के बाद ही बाजार पहुंच रहे हैं। वहीं सेवई, ड्राई फ्रूट्स और रसोई सामग्री के बढ़े दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। दुकानदारों के अनुसार ऑनलाइन बाजार और खाड़ी देशों से लोगों के नहीं लौटने का असर भी खरीदारी पर दिख रहा है। इधर जमशेदपुर प्रशासन ने शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए बकरीद को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट को साझा न करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बलों की तैनाती और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। प्रशासन ने अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर किसी भी भ्रामक या असत्यापित संदेश को शेयर नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के दौरान शहर की सीमा में भारी वाहनों जैसे ट्रकों, ट्रेलरों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। शांति और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बलों और दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। शहर के अलग अलग थानों जैसे मानगो, आज़ाद नगर, सिद्धगोड़ा में केंद्रीय शांति समिति की बैठकें आयोजित कर सभी से त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई है। नगर निगम प्रशासन को मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास साफ सफाई, निर्बाध बिजली आपूर्ति और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। आप सबों को बकरीद की अग्रिम शुभकामनाएं।

कच्चे धागे फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। स्वर संगीत और गीत रचना थी नुसरत फतेह अली खान की। और श्रोताओं, अब नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस लौटेंगे कुछ और रोचक जानकारियों, बातचीत और गीत संगीत के सिलसिले के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपके रेडियो सखी श्रेती। दोस्तों, देश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने 26 मई तक उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में राहत के आसार नहीं जताए हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सूखी हवाओं और तेज धूप के कारण दिन के साथ रातें भी तप रही हैं। AQI वेदर और दूसरे मौसम आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के रहे। ओडिशा का बुलांगीर, बिहार का सासाराम, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म शहरों में शामिल है। सूची में उत्तर प्रदेश के 13 शहर दर्ज किए गए हैं।

इधर जमशेदपुर समेत झारखंड में इस मई माह में तापमान पिछले साल की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। पिछले वर्ष जहां 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था मई के महीने में, वहीं इस बार 40 से 45 डिग्री से अधिक तापमान रह रहा है। गत शुक्रवार की शाम और शनिवार को 2 लोगों की मौत गर्मी के कारण हो गई है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। आम लोगों और राहगीरों के लिए सभी सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर पीने के साफ पानी का इंतजाम करने को कहा है। हिदायत दी है कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में पेयजल की कमी के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जमशेदपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज धूप और उमस से जनजीवन प्रभावित है। हीट वेव से मौत का सिलसिला जारी है। गर्मी की वजह से रविवार को 3 और लोगों की जान गई। पिछले 4 दिनों में 8

लोगों की जान जा चुकी है। अगले 10 दिनों तक भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दोपहर में लू और उमस के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक शहर का अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 29 मई और 3 जून के आसपास बारिश की संभावना है, लेकिन इससे तापमान में स्थायी गिरावट नहीं आएगी। और इधर सीएम ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं गर्मी को लेकर। सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर आम जनता के लिए पीने के साफ पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी डीसी, एसपी, थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ और पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहें। किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में पेयजल की कमी न होने पाए। बंद पड़े चापाकलों की मरम्मत और दूसरे वैकल्पिक व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर दुरुस्त कराया जाए, ताकि पानी के लिए हाहाकार न मचे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। अब तक इसकी स्थिति अनुकूल है। इसके 26 मई तक केरलम पहुंचने की संभावना है, जबकि झारखंड में संताल परगना के रास्ते 7 से 10 जून तक प्रवेश करने की स्थिति बन रही है। वहीं बिहार में 15 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। अब हम सभी बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं इस बेहद गर्मी के चलते।

रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम की आवाज़ों में, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में इसरार अंसारी का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरफरोश से।

श्रोताओं, आज मूर्तिकला के जनक माने जाने वाले पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जन्मे महान चित्रकार और मूर्तिकार रामकिंकर बैज की जयंती है। उन्होंने शांति निकेतन में कला की शिक्षा ली। वे अपनी मौलिकता, यथार्थवाद और आदिवासी जीवन शैली से जुड़ी कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। वे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने आधुनिक पश्चिमी कला शैलियों जैसे कि अभिव्यक्तिवाद और घनवाद को अपनी भारतीय कला में लागू किया। उस समय महंगी मूर्तिकला सामग्री की कमी के कारण उन्होंने कंक्रीट, सीमेंट, मिट्टी और बजरी का उपयोग करके विशाल मूर्तियां बनाई जो पर्यावरण के अनुकूल थी। उनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो 1938 की संथाल फैमिली, इसे भारत की पहली आधुनिक सार्वजनिक मूर्ति माना जाता है जिसमें आदिवासियों की गरिमा और संघर्ष को दिखाया गया है। 1935 की सुजाता, शांति निकेतन के नीलगिरी के पेड़ों के बीच स्थित ये 11 फीट ऊंची मूर्ति भारतीय कला का एक अनूठा उदाहरण है। दूसरी प्रमुख कृतियां उनकी मिलकॉल, महात्मा बुद्ध और नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के बाहर स्थापित यक्षी हैं। उन्होंने बंगाल के अकाल जैसी त्रासदियों और संथाल आदिवासियों के जीवन को अपनी कला का मुख्य आधार बनाया। कला में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और हम भी उनके कला में अद्वितीय योगदान के लिए उनकी जयंती पर नमन

रजत पदक जीतने वाले देश के पहले और एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। आज पहलवान सुशील कुमार का जन्मदिन है। 2010 में मॉस्को में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता उन्होंने और ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने सुशील कुमार। उन्होंने दिल्ली में वर्ष 2010 में, ग्लासगो में वर्ष 2014 में और 2018 के गोल्ड कोस्ट में लगातार 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पहलवान सुशील कुमार को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

श्रोताओं, भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध फ्रीस्टाइल पहलवानों में से एक हैं सुशील कुमार। वो व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक पदक, 2008 में बीजिंग में कांस्य और 2012 लंदन में

सुल्तान फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और शादाब फरीदी की आवाज़ों में। विशाल शेखर का संगीत निर्देशन था, गीत लिखा था शाद कामिल ने। और इसी के साथ नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम से अब मुझे यानी श्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, जमशेदपुर।
1: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं, जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित

किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भावगीत बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर

पीछे मुड़कर जो देखा तो यादों का लंबा कारवां इंतज़ार में खड़ा था, ख्वाहिशों का रेला भी लगा था। अनकही कितनी ही बातें कही जाने को बेताब थी, हम जहाँ जाते हमारे पीछे पीछे चली आती। अब कुछ सवाल करने लगी हैं, यादों में गुफ्तगू की वजह पूछने लगी हैं। हम लाजवाब हैं और वो सुनने को बेताब खड़ी हैं।

दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आखिर आपके बाद हमने आपके साथ ही तो गुजारे हैं अपने दिन रात, जो पास ना होकर भी हर घड़ी साथ हो। हर आती जाती सांस में खुशबू की तरह गुजरता रहता हो जो, उससे बिछड़ने की शिकायत कैसे करे भला कोई।

प्यार के कुछ बेशकीमती पाकीज़ा लम्हों में ख्वाबों जज्बातों का सैलाब उमड़ता है, फिर एक ऐसा नूर फलक तक फैल जाता है जिसमें रूहें डूब जाती हैं, फरिश्ते भी सजदे में झुक जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पूरी कायनात खुदा ने प्यार से ही तो बनाई है, और कुछ प्यार के फरिश्तों को दुनिया में भेजकर ये पैगाम भी दिया है कि मुझ तक पहुँचने का सबसे आसान जरिया और रास्ता मोहब्बत ही है। मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तां में तुमसे ही तो बहार छाई है, मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तां में तुमसे ही तो बहार छाई है। फूलों में रंग मेरे थे लेकिन इनमें खुशबू

दिल की दरगाह पर बरसों से आंखें बैठी रहीं, एक दीदार को इंतज़ार करती रहीं, तड़पती रहीं। भीगी पलकों की चादर चढ़ाकर खुदा जहां नियामतें बांट रहा था, मैं खुद को फना कर आई और बदली तुझको मुकद्दर में लिखवा लाई। तेरी आहटों से अब आंगन में बारिशें हैं, समा रंगीन है, सांसों से प्यार की खुशबू आती है। तू जो रूबरू आ गया है, चारों ओर फजा में रंगीनी ही रंगीनी छाई है।

गीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं लक्ष्य, ताल, जोधा अकबर और मैदान। आवाजें थीं गानों के लिए हरिहरन, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम, मधुश्री, ऋचा शर्मा।

और जावेद अली की। संगीतकार थे एआर रहमान और शंकर एहसान लॉय। गीतकार थे आनंद बख्शी, जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है वृंदावनी सारंग।

राग वृंदावनी सारंग में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। दिन का 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मरीजों को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं। और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य

0: अभियान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हजारीबाग के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने योजनाओं और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार के कार्यों की सराहना की है।
1: समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्तियों को क्या जरूरत है, क्या समस्या है, आम आदमी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए 12 वर्षों से हमारी सरकार के मुखिया मोदी जी लगे हुए हैं।
2: 12 वर्ष मोदी जी का राज हुआ, आज तक अपने जीवन में कभी हमने नहीं पाया है। हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की व्यवस्था, रोड को देखिए, जहाज को देखिए, माने सब तरह की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ।
0: साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति समुदाय के समग्र विकास के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कुल 336 गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण साहिबगंज के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को योजनाओं से जोड़ना है।
3: जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं या अन्य तरह के कार्य करने हैं, जैसे वहाँ आंगनबाड़ी नहीं चल रहे हैं तो भवन में आंगनबाड़ी चलाया जा सकता है, या NM वगैरह आती है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो अपना किसी भी तरह का बैठक हो, ग्राम सभा करना हो, उस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में बैठ करके अपने उन कार्यों को संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा धरती आवा योजना के तहत हमारे कई पीवीटी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण स्वीकृति प्राप्त हुआ है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। बैठक में आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग से राज्यसभा चुनाव के दौरान विशेष निगरानी की मांग की है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने झामुमो के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनके पास 56 विधायक हैं?
4: उन लोगों को खुद ही अपने में एक सहमति नहीं है, जो 56 के वो दावे कर रहे हैं, 56 में 56 है क्या? आज उनके अंदर ही अंतर कला है, और जो बात एलिगेशन हम लोगों को लगा रहे हैं वो उस मत के अब खिलाड़ी हो गए हैं, जिन्होंने झारखंड को बेचने का और खरीदने का जिनका पुराना अनुभव है, और दूसरे को ज्ञान ना दे तो अच्छा है। हॉर्स ट्रेडिंग उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और राज्यसभा में यहाँ क्या हुआ, कलंकित हुआ, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास रहा है।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सहर घाटी पंचायत में बड़े पैमाने पर अवैध बालू कारोबार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक संरक्षण में प्रतिदिन 50 से 60 ट्रैक्टरों के जरिए अवैध बालू का उठाव और भंडारण किया जा रहा है। उन्होंने दुमका पुलिस और जिला प्रशासन से मामले में FIR दर्ज कर माफियाओं तथा संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभाग के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं को लागू करने में आ रही परेशानियों को दूर करने पर भी चर्चा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद हजारीबाग

0: खूंटी, गुमला, गिरिडीह समेत कई जिलों के थानों के बाहर आम लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि मुफस्सिल और पचम्बा थाना परिसर के बाहर प्याऊ की व्यवस्था की गई है।
1: गर्मी बढ़ गया है, इसको लेकर गिरिडीह जिले में जितने भी थाना है सभी जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। जो मुफस्सिल पचम्बा में ये आज से व्यवस्था लागू की गई है और हम लोग का ये प्रयास है कि आने वाले एक दो दिनों के अंदर में सभी थाना में ये व्यवस्था रहेगी।
0: रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक करीब 2600 करोड़ रुपए का लोन देगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एडीबी टीम के साथ बैठक में निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। रिम्स 2 को सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं, आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि झारखंड के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। सरकार का लक्ष्य 6 महीने में लोन प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 से निर्माण शुरू कर 2 वर्षों में अस्पताल चालू करना है। झारखंड सरकार ने राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ आज से विशेष महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की जाएगी। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327, जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। आगामी ईद उल जुहा बकरीद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए। डीजीपी ने संवेदनशील और हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरतने, धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी रोकने, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर निगरानी और शांति समितियों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च, मरीजों को मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आज से 1 महीने तक चलेगा विशेष महाअभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली और राज्य केंद्रों से समाचारों का प्रसारण। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:20 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे हम आपको थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: Akashwadi at 90.
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर हैं हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और इस संगीतमय सफर की हम सफर, मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं प्रिया सरैया और दिव्य कुमार की आवाज़ों में ABCD2 फिल्म का गाना। सचिन जिगर का संगीत निर्देशन है, गीत लिखा है प्रिया सरैया ने। आइए सुनें।

रईस। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में। प्रीतम चक्रवर्ती का संगीतबद्ध किया गाना था ये और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लाइफ इन मेट्रो का गाना सोहम की आवाज़ में। प्रीतम का संगीत निर्देशन है, गीत लिखा है सईद कादरी ने।

कविता सेठ की आवाज़ में अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वेक अप सेट से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में सरबजीत फिल्म का ये गाना। संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने और गीत लिखा है रश्मि विराग ने।

विपिन सचदेव और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में जुनून फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था आनंद मिलन ने और गीत लिखा था समीर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म राज से, और ये गाना है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। नदीम श्रवण का संगीत निर्देशन है, समीर का लिखा हुआ गीत। आइए सुनें।

और इसी खूबसूरत से नगमे के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: department. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and inset satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
3: As democratic nations,
4: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
3: Will become even more important to the world.
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
6: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
2: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप मिड्डे न्यूज और दोपहर समाचार सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं हम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, लेकर हाजिर है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। गीत संगीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं अब, और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में है ये गाना। नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ गीत लिखा है समीर ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम हो गए आपके का ये गाना। संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने, गीत लिखा था समीर ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का, गीत लिखा है समीर ने।

यारा दिलदारा फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। जतिन ललित का संगीत निर्देशन था, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2:55 होने को हैं। अब सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आज दूसरे दिन भी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। वे आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न सरकारी विभागों के काम का लेखा जोखा लेंगे और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी देंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है।
1: मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना, और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। हमारे देश की जनता उनके रोम रोम में रमी है, उनकी हर एक सांस में बसी है।
0: झारखंड रेल पुलिस के आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने चांडल रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थाने के कागजात, मालखाना और हाजत को देखा। उन्होंने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। अफसरों ने जवानों से बात कर उनके रहने और खाने की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। सिमडेगा में आज हजारों राम भक्तों ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। लोग प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री राम रेखा धाम को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौशल राज सिंहदेव ने कहा कि पर्यटन स्थल बनने से धाम की पवित्रता भंग होगी, इसे सिर्फ धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के काम से सिमडेगा की महिलाओं के जीवन में बड़ा सुधार आया है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनी है। मुफ्त गैस मिलने से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। इससे उनके स्वास्थ्य और समय दोनों की बचत हो रही है। सिमडेगा की रहने वाली रेणु देवी ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
2: पहले जैसे तैसे कर करके लकड़ी लाते थे, खाना बनाते थे, बच्चा लोगों का स्कूल लेट भी हो जाता था। अभी तो गैस आया है, तब से समय भी बचता है, कुछ और काम भी कर लेते हैं। हम तो उनका धन्यवाद करना चाहेंगे।
0: रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के साथ कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है। एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि ये अपराधी पतरातू इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्तौल, 34 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जान की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं, ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन अराफात में अपना पूरा दिन नमाज और दुआओं में बिता रहे हैं। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि गढ़वा और पलामू में लू का असर बरकरार रह सकता है। इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
0: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँव और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि
0: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
0: जी
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पीसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा
2: जी।
0: इसने तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौधों लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
2: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
0: जी।
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
2: जी।
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
2: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर

0: This was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।

0: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जेरापुर जय भारत।
2: जय जेरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
5: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
6: जोरावर सिंह महाराज आ रहे थे। महाराज जोरावर सिंह खास
7: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
7: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
7: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
7: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाएं।
7: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
7: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
8: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे, और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
8: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
6: बिल्कुल।
8: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
9: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
8: लेकिन जरा होशियारी से।
9: जो हुकुम सरकार।

0: Honor.
1: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
1: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियो,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
3: जी.
0: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
1: शाबाश, शाबाश, सालार जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
2: हुजूर.
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
1: हे चलो इसको.
0: चलो मुझे. छोड़ो मुझे.
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के लालच भी दिए गए. लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान भी क्यों ना गंवानी पड़े.
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया. लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता.
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा.
0: ये नामुमकिन है.
6: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते. हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे.
6: Yeah.
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है.
6: तो तुम नहीं मानोगे. देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें. ये सजा.
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा.

0: हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: Actually, you are a fool.
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने ठुमरी। कलाकार है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान।

0: उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे ठुमरी गायन। कलाकार थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं संत राम सिंह रागेश। लीजिए सुनिए उनकी पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम लोकगीत में आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं संतराम सिंह रागेश। आइए सुनते हैं इनकी अगली प्रस्तुति।

इसके साथ ही कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का नमस्कार।

लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मुख्य समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

शिक्षा साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न सरकारी विभागों के काम का लेखा जोखा भी लेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में नया रिकॉर्ड बनाया है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में खादी का कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा ने आज गढ़वा जिले के 35वें उपायुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिले का विकास और सुशासन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। विहिप के महामंत्री वीरेंद्र साहू के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में गौवंश की हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में साल 2025 से ही इस पर प्रतिबंध लागू है। झारखंड रेल पुलिस के आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने चांडल रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थाने के कागजात, मालखाना और हाजत को देखा। उन्होंने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 4:02 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं दिलवाले फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत निर्देशन प्रीतम का है, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शिवाय फिल्म का ये गाना, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। संगीत निर्देशन मिथुन का है और शब्द रचना है सईद कादरी की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं तुम बिन टू फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत निर्देशन अंकित तिवारी का है, गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना। आवाज़ पलक मुच्छाल की है, अमाल मलिक का संगीत निर्देशन है और शब्द रचना है मनोज मुंतशिर की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फैंटम फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत निर्देशन प्रीतम का है, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। और अब मुझे यानी श्रीति को फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम अभी जारी रहेगा, फिलहाल सुनिए फैंटम फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म पीके का गीत। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीतकार शांतनु मोइत्रा।

धड़क फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य की, धुन बनाई थी अजय अतुल ने। अरिजीत सिंह की आवाज़ में लीजिए सुनिए फिल्म

शब्द रचना थी कौसर मुनीर की, संगीत निर्देशन आकाशदीप सेनगुप्ता का था, आवाजें लक्ष्य कपूर, आकाशदीप सेनगुप्ता और सुवर्णा तिवारी की थी। इस गीत को हमने लिया था फिल्म बवाल से।

द डर्टी पिक्चर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कमाल खान और साथियों की आवाज़ों में। बोल थे रजत अरोड़ा के, धुन बनाई थी विशाल शेखर ने। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं धड़क 2 फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार सिद्धार्थ गरिमा, संगीतकार श्रेयस पुराणिक।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार मुख्यांश का प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शैक्षणिक योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष 2026-27 की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आज रांची में आदि निवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। इससे आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, भूमि और परंपरा के संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के मुख्य मार्ग और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जामताड़ा पुलिस ने लूट और छिनतई की घटनाओं में शामिल एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में भीषण गर्मी के बीच पिछले 48 घंटे से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। जलापूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों और महिलाओं ने जिला परिषद सदस्य डॉ. परितोष सिंह के नेतृत्व में पानी टंकी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 5:02 हुए हैं। युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवाणी थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तनु।
1: मैं हूं अरुणिमा।
0: आप सुन रहे हैं युववाणी जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से। फिर हम चर्चा करेंगे भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में युवाओं का क्या योगदान है और साहित्य क्या समाज को बदल सकता है। इन सब विषयों पर चर्चा के बाद आज के समसामयिक गतिविधियों पर नजर डालेंगे। भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास टैलेंट तो है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनका सपना शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो कोई खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार लाई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। यह योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक यानी कोलैटरल फ्री लोन्स प्रदान करती है। कोलैटरल फ्री लोन्स आखिर होती क्या है? यह वह ऋण होता है जिसमें किसी संपत्ति को गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं होती और जिसे महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सहायता के लिए वित्त मंत्री जी ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। चलिए अब बात करते हैं मुद्रा योजना में मुद्रा का क्या मतलब होता है। मुद्रा का अर्थ होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसके तहत माइक्रो यूनिट उद्यमों का विकास और उद्यमियों को सामाजिक आर्थिक रूप से वंचितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है।

अभी आप सुन रहे थे चक दे इंडिया का गीत, जिसकी गायिका है हेमा सरदेसाई, संगीतकार सलीम सुलेमान और गीतकार थे जयदीप साहनी।

चलिए अब थोड़ी बात करते हैं इसकी श्रेणियों पर, कौन सी श्रेणी में कितना लोन मिलेगा और विभाजित करने का आधार क्या है। पीएम मुद्रा योजना के लाभार्थी विकास चरण के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शिशु श्रेणी, जिसमें 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। दूसरा है किशोर श्रेणी, जिसमें 50,000 से 5,00,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। तीसरा है तरुण, जिसमें 5,00,000 से 10,00,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। और चौथा है तरुण प्लस, जिसमें 10,00,000 से लेकर 20,00,000 रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है। और ये ऋण सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत अपना ऋण चुकाया हो। इसके साथ ही यह योजना विशेष रूप से शिशु श्रेणी में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि नई पीढ़ी के युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। और देश के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन 3 स्तंभों पर आधारित होता है। पहला, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। दूसरा, असुरक्षित को सुरक्षित करना। तीसरा, जिन क्षेत्रों को वित्त पोषण नहीं मिलता उन्हें वित्त

पोषण प्रदान करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने न केवल युवाओं के स्वरोजगार और रोजगार का सृजन को बढ़ावा दिया है, साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण उद्यमियों को भी सशक्त बनाया है, जिससे ऋण का औसत भी 3 गुना हो गया है। वित्त वर्ष 2016 में 38,000 रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक 1.2 लाख रुपए हो गया है। और इस वर्ष 8 अप्रैल 2026 को इस योजना ने अपने 11 साल पूरे किए हैं। और 2015 में शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 32.61 लाख करोड़ से अधिक के और 52 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

0: अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे मुद्रा लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। मुद्रा लोन सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास सेवा क्षेत्र, व्यापार या निर्माण गतिविधियों के लिए अपने खुद के व्यापार योजनाएं हैं। और इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन फॉर्म इत्यादि आवश्यकता अनुसार दस्तावेज होने चाहिए। इसकी एक खास बात है, इसमें बिना गारंटी या तृतीय पक्ष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि स्टार्टअप्स को एक नई उड़ान दे रहा है। ये उड़ान है उन युवाओं की, उन महिलाओं की, जिनके पास आइडियाज तो है पर उसे पहचान दिलाने का कोई साधन नहीं है, पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इसे साकार किया है। और इसी विजन के साथ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उद्यमियों को सशक्त बनाना जारी रखेगा ताकि वे 2047 तक भारत बनाने की हमारी राष्ट्र की यात्रा में सक्रिय भागीदार बन सके। इसी के साथ हमारा भी यह मानना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केवल लोन योजना नहीं है बल्कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने का माध्यम है। इस योजना ने छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को और आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा को जागृत किया है और देश भी अपनी आर्थिक विकास की यात्रा शुरू कर चुका है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। अब ये बताइए आपको क्या लगता है, अर्थव्यवस्था केवल सरकार या बड़े उद्योगों से चलती है? जी नहीं, पूरी तरह से यह सही नहीं है क्योंकि सरकार और बड़े उद्योगों के साथ युवाओं की मेहनत, कौशल, नए विचार और आत्मनिर्भर सोच इसकी आधारशिला है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए युवाओं की भूमिका देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब युवा रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देना भी शुरू करते हैं तब देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती है। क्यों, सही कहा ना अरुणिमा?
1: हाँ तनु, बिल्कुल।

दोस्तों, आज जब हम सुबह का अखबार उठाते हैं या न्यूज़ पोर्टल्स देखते हैं तो एक खबर बार बार सुनने को मिलती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सुनने में ये बात बड़ी भारी भरकम लगती है, जैसे यह सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसों और फाइलों की बात हो। पर क्या वाकई ऐसा है? हकीकत तो यह है दोस्तों कि इस बढ़ती इकोनॉमी का असली चेहरा आप और हम जैसे युवा हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे।

कैसे भारत के नौजवान देश की तरक्की के इंजन हैं। सबसे पहली बात, नवाचार यानी इनोवेशन। याद कीजिए वो दौर जब हम सिर्फ बाहर की कंपनियों के ऐप्स और प्रोडक्ट्स पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत दुनिया का स्टार्टअप हब बन चुका है।

हमारे देश के छोटे छोटे शहरों से निकलकर युवा ऐसे आइडियाज ला रहे हैं जो दुनिया को हैरान कर रहा है, चाहे वो खेतीबाड़ी में नई तकनीक का इस्तेमाल हो या बैठे डिजिटल पेमेंट की सुविधा। जब एक युवा अपने स्टार्टअप का शुरुआत करता है तो वो केवल खुद के लिए ही पैसे नहीं कमाता बल्कि देश और लोगों के रोजगार भी देता है। यही तो है अर्थव्यवस्था की असली मजबूती। दोस्तों, एक और बड़ी क्रांति जो हमारे आंखों के सामने हो रही है वह है डिजिटल इकोनॉमी। आज गांव की किसी भी दुकान पर बैठा एक लड़का जब QR कोड से पेमेंट लेता है तो वो देश की फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है। हमारी जनरेशन ने तकनीक को इतनी सहजता से अपनाया है कि आज दुनिया हमें देख रही है। लेकिन क्या योगदान सिर्फ तकनीक तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज का युवा स्किल इंडिया के जरिए खुद को हुनरमंद बना रहा है। कोई सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक खेती को नई पहचान दे रहा है, तो कोई स्पोर्ट्स और आर्ट्स के जरिए भारत के सॉफ्ट पावर को ग्लोबल बना रहा है। यहाँ तक बात समझनी जरूरी है। देश की तरक्की सिर्फ सरकार की नीतियों से ही नहीं बल्कि हमारे संकल्पों से चलती है। जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और देश के बने सामान पर गर्व करते हैं तो हम सीधे तौर पर अपने देश के कारीगरों और छोटे उद्योगों की मदद कर रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि युवा वह है जो आने वाले कल का निर्माता है। आज का भारत इसी राह पर है। हम सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, हम निर्माता भी है और समस्या सुलझाने वाले भी बन रहे हैं। इसी के साथ खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम युवा की प्रगति ही भारत की प्रगति है।

तो दोस्तों, साफ है कि हमारी मेहनत और नए आइडियाज ही भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हम डिजिटल दौर में डेटा और डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक मजबूत देश बनने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है? जब हम अपने देश की मजबूती की बात कर रहे हैं, तब इसका मतलब हमारी जड़ों की मजबूती से है, और हमारी जड़ें हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति की बात करते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि आज हम आर्थिक रूप से तो बदल रहे हैं, पर क्या हमारे विचार बदल रहे हैं? और विचारों को बदलने की ताकत किस में है? क्या इसमें साहित्य की भूमिका रह गई है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम अपने कार्यक्रम के अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम चर्चा करेंगे कि क्या साहित्य वाकई समाज को बदल सकता है।

अब हम बात कर रहे हैं हमारे समाज में बढ़ते हुए डिजिटल रफ्तार की, जहां साहित्य कुछ ठहर सी गई है। दोस्तों, आज का दौर इंटरनेट का है, रील्स का है और इंस्टेंट अपडेट्स का है। ऐसे में एक सवाल अक्सर मन में आता है, क्या आज के समय में किताबों, कहानियों और कविताओं में वो दम बच गया है जो समाज की दिशा बदल सकती है? क्या साहित्य वाकई समाज का आईना है या फिर यह उससे भी बढ़कर कुछ है? ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि साहित्य सिर्फ आईना ही नहीं बल्कि वो मशाल है जो अंधेरे रास्तों पर समाज को रास्ता भी दिखाती है। इतिहास गवाह है, जब भी समाज में जागरूकता की आवश्यकता आई है तभी किसी लेखक ने अपनी कलम उठाई है।

याद कीजिए मुंशी प्रेमचंद को। उनकी कहानियों ने उस दौर में छुआछूत, गरीबी और किसानों के दर्द को इस तरह दर्शाया है। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। गोदान का होरी आज भी हमें समाज की विसंगतियों पर सोचने को मजबूर कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुरानी बातें हैं, आज क्या हो रहा है। दोस्तों, साहित्य हमारे अंदर सहानुभूति पैदा करती है। जब आप किसी दूसरे प्रांत, किसी दूसरी जाति या किसी दूसरे देश के लेखक की कहानी पढ़ते हैं, तो आप उनके भावनाओं और सोच को भी महसूस करते हैं। यही महसूस करना बदलाव की पहली सीढ़ी है।

आज का युवा साहित्यकार, चाहे वो कविता कहानियां लिख रहा हो या ब्लॉग, वो मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और समानता जैसे विषयों पर बात कर रहा है। यह साहित्य ही है जो इन विषयों पर चर्चा करने के आज के युवाओं को एक मंच प्रदान कर रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। जहाँ तलवार केवल शारीरिक प्रभाव करता है, वहाँ कलम इससे बढ़कर मानसिक प्रभाव बनाता है। चाहे वो दिनकर की रश्मिर्थी हो या दुष्यंत कुमार की गजलें। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये शब्द आज भी युवाओं के भीतर बदलाव लाने के जज्बे को पैदा करता है। साहित्य हमें सवाल करना सिखाता है और जवाब मांगना भी, यदि एक जागरूक और प्रगति ओर बढ़ाता हुआ समाज है। तो अगली बार आप जब भी कोई किताब उठाए, यह याद रखिएगा कि आप सिर्फ पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि अपने भीतर एक बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, साहित्य समाज को बदल सकता है, बस हमें ज़रूरत है उसे पढ़ने की और समझने की।

विचारों के इसी बदलाव के साथ साथ ज़रूरी है देश दुनिया की बदलती गतिविधियों पर भी नज़र रखना। और देश दुनिया की इन्हीं ताज़ा खबरों के साथ मेरी साथी प्रस्तोता तनु अग्रसर करेंगी हमारे कार्यक्रम की आखिरी अध्याय को।

तो दोस्तों, मैं तन्नू एक बार फिर लौट आई हूँ देश विदेश व खेल से जुड़ी समसामयिक खबरों के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मनीषा संजय हवलदार को सीबीआई की हिरासत में भेजा। युगांडा में इबोला के 2 नए मरीज मिले, अब तक कुल 7 लोग संक्रमित हुए। भारत के राजस्थान के जैसलमेर में नामित दांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार मिले। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने कानून के शासन और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अब एक नजर खेल समाचार। नार्वे शतरंज प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। फुटबॉल में भारत ने गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-10 से हराया। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में गुरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता।

युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवावाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

ढलती हुई शाम, खिड़की से आती थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा और एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम में और आज आप सबके साथ है वही पुरानी साथी मंजू।

श्रोताओं, आजकल की दोपहर हमें खूब तपा रही है, तेज धूप, भीषण गर्मी और वो थका देने वाली लू। लेकिन दिन कितना भी गर्म क्यों ना हो, ये शाम हमेशा अपना सुहाना रूप लेकर आ ही जाती है। हमें सीख दे जाती है कि मुश्किलें भी हमें कितना ही परेशान कर दे, हमें कितना भी तपा दे, थका दे, लेकिन इसके बाद सुहाना समय तो आएगा ही। बहरहाल इस सुहाने समय को खास बनाते हैं कुछ जानकारियों के साथ। तो शुरू करते हैं ना अपनी जानकारियों से भरपूर खास बातें।

श्रोताओं, आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी तो बाहर देखकर एक विचार आया कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। जी हाँ, आज का हमारा दौर वो दौर नहीं है जहाँ सिर्फ हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत से मंजिल मिल जाए। आज का दौर है स्मार्ट वर्क का, और इस स्मार्ट वर्क की सबसे बड़ी चाबी क्या है पता है आपको? वो है नई तकनीक। सोचिए, क्या आज के समय में हम बिना स्मार्टफोन, बिना इंटरनेट या बिना कंप्यूटर के अपने करियर या बिजनेस को आगे बढ़ाने की कल्पना भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। इतिहास गवाह है, जिसने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला, वक्त ने उसे पीछे छोड़ दिया। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या एक बिजनेसमैन, सफलता का सीधा रास्ता अब डिजिटल हाईवे से होकर गुजरता है।

श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि हम नई तकनीक क्यों सीखें? तो बता दें कि इसके तीन बड़े फायदे हैं। पहला है समय की बचत। जी हाँ, जो काम पहले घंटों में होता था, आज सही सॉफ्टवेयर और एप्स की मदद से वो मिनटों में हो जाता है। दूसरा फायदा, इससे ग्लोबल रीच बढ़ती है। जी हाँ, तकनीक की बदौलत आज आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद इंसान से जुड़ सकते हैं, अपना हुनर बेच सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि इससे लगातार ग्रोथ बढ़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग, ये नई तकनीकें आज के जॉब मार्केट की सबसे बड़ी

श्रोताओं, एक बात कहना चाहूंगी आपसे, तकनीक से डरिए मत, इसे अपना दोस्त बनाइए। कंप्यूटर कोडिंग या नए एप्स सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जरूरत है तो आपके अंदर के एक छोटे से बच्चे को जगाने की, जो हर नई चीज को देखकर कहता है कि चलो सीखकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन कम से कम 20 मिनट किसी नए डिजिटल स्किल या तकनीक को समझने में लगाएं। याद रखिए श्रोताओं, आपकी आज की सीखी हुई तकनीक कल की आपकी सफलता की गारंटी बनेगी। तो बदलिए खुद को, सीखिए कुछ नया और छू लीजिए आसमान।

0: कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म खामोशी का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत निर्देशन था जतिन ललित का।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रमिक श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने। श्रोताओं कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं कुछ और खास जानकारियों के साथ। जी हां, मुंह का कैंसर कारण एवं उपचार, इस विषय पर आज आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह और उनसे बातचीत कर रहे हैं संजय प्रसाद। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
4: श्रोताओं आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह जो TMH से हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुंह का कैंसर क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कारणों से। मुंह के कैंसर का जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से हैं?
5: कि मुंह का कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, बाकी कैंसर के केसेस में हम उसके कारण के विषय में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए उसकी रोकथाम भी हम लोगों के बस में नहीं होती है। लेकिन मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके करीब करीब 75% केसेस में हम लोगों को उसका कारण पता होता है और हम लोग चाहें तो उन कारणों को दूर करके इस कैंसर की समस्या के लोड को कम कर सकते हैं।
4: कारण कौन कौन से हो सकते हैं?
5: इसके सबसे प्रमुख कारण है हम लोगों का बिहेवियर, तंबाकू खाने की आदत, जो तंबाकू के विभिन्न रूप में लोग सेवन करते हैं जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान, जर्दा, खैनी और गुड़ाकू, और आजकल गुटके का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया खासकर युवाओं में, जो एक बहुत ही खतरनाक समस्या के रूप में हम लोगों के साथ उभर कर आया है।
4: मतलब ये जो है नशा जो करते हैं लोग, खास करके चबाने वाले जो तंबाकू होते हैं जो आपने अभी बताया जिनके नाम, इसके ये एक बहुत बड़ी वजह है मुंह के कैंसर का।
5: जी, सिगरेट भी।
4: अच्छा,
5: स्मोकलेस, दो तरह के तंबाकू के सेवन से लोग जुड़े हुए होते हैं, एक स्मोकलेस टोबैको और दूसरा सिगरेट बीड़ी वगैरह जहाँ स्मोक प्रोड्यूस
4: हुआ निकलता है,
5: दोनों ही मुंह के कैंसर के कारण है।
4: अच्छा, इसमें हुक्का भी शामिल है?
5: हुक्का भी शामिल है।
4: ये तो आपने कारण के विषय में बताया,
5: और सारे कारण हैं।
4: हाँ, तो उनके बारे में भी थोड़ी विस्तार से श्रोताओं को।
5: जो भी और सारे जो कारण हैं वो भी काफी हद तक रोकथाम करने योग्य, जैसे प्रॉपर ओरल हाइजीन, मुख के स्वास्थ्य की देखरेख। मुंह के स्वास्थ्य से मतलब है मुंह की साफ सफाई। अगर मुंह में कोई सड़न है, कोई खराब दांत है, कोई शार्प टूथ है जो गाल को बार बार काट रहा है, इल फिटिंग डेंचर, जो दांत आपने लगा रखा हुआ अगर वह ठीक से मुंह में फिट नहीं होता है, या आप मुंह की सफाई रेगुलरली नहीं करते हैं, तो ये सब मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है।
4: और मतलब थोड़ी सी लापरवाही से ये जानलेवा रोग जैसे हो सकता है और इससे हम लोगों को बचना है। लेकिन ये लक्षण कुछ होंगे इस बीमारी के जिससे हम लोगों को पता चल सके कि इस तरह का कुछ होने वाला है मुंह के कैंसर के?
5: जी हाँ, जी
4: हाँ। तो उस लक्षण के विषय में कुछ बताएं।
5: कुछ कंडीशन है जिन्हें प्री मेलिग्नेंट कंडीशन कहा जाता है।
4: अच्छा,
5: ये कैंसर का शुरुआती दौर होता है, जैसे मुंह में वेलवेटी रेड पैच का होना, उजले धब्बे का होना, वेलवेटी उजले धब्बे का होना, या दोनों के मिक्स रूप आते हैं कभी कभी सामने, खास करके तंबाकू खाने वाले, सिगरेट खाने

0: वाले जर्दा खाने वाले लोगों को तभी सावधान हो जाना चाहिए जब मुंह में वाल्वेटी रेड पेच पैच जिसे कि रेथ्रोप्लेकिया कहते हैं,
1: मतलब लाल रंग का धब्बा आ जाता है उनके
0: जी,
1: मुंह में।
0: जी हाँ, और या उजला धब्बा,
1: अच्छा सफेद भी हो सकता
0: जी
1: है।
0: और दोनों का मिक्सचर अगर ऐसा है तो सावधान हो जाना चाहिए कि ये कैंसर का पहला सीढ़ी है। अगर इस अवस्था में बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, इसकी उचित रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई, हैबिट चेंज नहीं किया गया, तो ये कैंसर का रूप ले सकता है,
1: बीमारी हो सकती है, बढ़ सकता है। तो जो लोग रोकथाम कर लिए वो तो ठीक है, लेकिन जो लक्षण नहीं पकड़ पाए तो अगला स्टेज कैसा क्या हो जाता है?
0: अगर आप लक्षण नहीं पकड़ पाए, आपने उसको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, तो ये जीभ या मसूड़े में या पैलेट में कहीं भी स्वेलिंग, थिकनेस, सूजन, मोटापन, लंप, बम्प, रफ सरफेस, खुरदरापन, इरोडेड एरिया, ये सारे कैंसर के की शुरुआती अवस्था होती है। और उसका लक्षण ऐसा कुछ भी होने से तुरंत ही क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्जन या डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए।
1: अभी कारण और लक्षण के विषय में आपने सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हमें बताएं कि इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे आपने शुरुआत में कही थी कि मुंह के कैंसर का अगर पता शुरू में लग जाए तो इसे रोका जा सकता है।
0: सबसे प्रथम तो है कि अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें, अपने व्यवहार को मॉडिफाई करें। हम लोगों का जो तंबाकू सेवन का एज ओल्ड हैबिट है हमारे सोसाइटी में, उस पर रोक लगनी चाहिए।
1: और ये दुर्भाग्य के विषय है कि आज बुजुर्ग से लेकर युवा तक, आजकल तो कहीं कहीं बच्चे भी तंबाकू और गुटखा खाते हुए दिखाई देते हैं और सड़कों पर थूकते नजर आते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है।
0: हाँ, इसमें रोकथाम के लिए ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है। मुंह के किसी भी तरह के सस्पिशियस लीजन को इग्नोर नहीं करना है। कोई भी अगर संदेहास्पद चीजों का मैंने जिक्र किया है आपके सामने, अगर ऐसा दिखे जिसमें है कि अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हो, पेन मुंह में हो, कोई अल्सर हो जो हील ना करता हो, दो तीन सप्ताह अगर हील नहीं करता तो उसमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होना चाहिए कि ये कैंसरस है। अदरवाइज छोटे घाव और जो घाव कैंसर की वजह से नहीं होते हैं जल्दी ही भर जाते हैं। और निगलने, चबाने, बोलने में परेशानी हो या जीभ को हिला पाने में या जबड़े को घुमा पाने में असुविधा हो तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी ये आवाज में चेंज के रूप में सामने आता है, जिसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। अगर किसी को क्रॉनिक सोर थ्रोट हो या गला बजना जिसको बोलते हैं, ये लंबा समय तक रहे तो ENT सर्जन का सलाह लेना चाहिए। और सारे प्रिवेंट टेबल कॉज हैं, जैसे मुंह का अगर ओरल हाइजीन आप रखते हैं तो समस्या कम हो सकती है।
1: साफ सफाई तो खैर हर मनुष्य को रखना चाहिए।
0: जी, मुंह की सफाई खास करके। और एक अभी नए समय में, इस समय में कुछ नया रिसर्च हुआ है जिससे पता चला है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, फिर ये भी बिहेवियर रिलेटेड है। अगर लोगों में का सेक्सुअल बिहेवियर हेल्दी हो तो इस वायरस के स्प्रेड में कमी आती है। अगर सेक्सुअल बिहेवियर इनडिस्क्रिमिनेट हो और अनहेल्दी हो और हम लोग प्रोटेक्शन नहीं ले सेक्सुअल एक्ट के समय, जैसे कंडोम वगैरह का व्यवहार नहीं करें, तो इस कंडीशन में इस वायरस का स्प्रेड समाज में बहुत तेजी से होता है। और ये भी एक कारण बताया गया मुंह के कैंसर में। पहले से ये वायरस स्त्रियों में योनि या यूटरस के लोअर पार्ट जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसके कैंसर के लिए बहुत उत्तरदायी माना गया है। इसलिए इसका रोकथाम हम लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके कर सकते हैं।
1: ये तो आपने कहा कि व्यवहार में किस तरह से बदलाव लाया जाए और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब भी कुछ एबनॉर्मल लक्षण दिखाई दे तो हमें डॉक्टर के सलाह लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिनको ये मुंह का कैंसर हो जाता है तो उसे आप कैसे देखते हैं कि पहले चरण में या दूसरे चरण में या तीसरे चरण में, इसका मापदंड कैसे होता है?
0: सबसे पहले तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा अपने डॉक्टर दोस्तों को कि जब भी कोई पेशेंट इन सारी समस्याओं को लेकर के कोई सस्पिशियस लीजन या कुछ पेन, सोर थ्रोट, अल्सर, इरोजन, बम्प, लंप, किसी चीज को उसको इग्नोर ना करें। और मुंह का कुछ भाग ऐसा है जो कम रोशनी में और बिना टंग डिप्रेसर के नहीं देखा जा सकता। इसके लिए किसी बहुत बड़े स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर बड़ी आसानी से मुंह के कैंसर का डिटेक्शन कर सकता है, बशर्ते कि वो ध्यान दें, थोड़ा मेटिकुलस हो और अच्छा लाइट जैसे टॉर्च का इस्तेमाल करें और टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल करें, उससे मुंह

0: उसके पीछे
1: अच्छी तरह से जांच
0: जी, ताकि अच्छी तरह, नहीं तो अगर सरसरी निगाह से देखने से जीभ के पीछे और गले का कैंसर जिसको फेरिंग्स बोलते हैं उसका पता नहीं चल पाता। तो डॉक्टर बंधुओं से मेरा यही आग्रह है कि जब भी ऐसे पेशेंट आए तो उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करें, प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से सस्पिशियस लीजन बड़ी जल्दी पकड़े जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक बार ये लीजन जब पकड़ा गया तब इसको कंफर्म करने की आवश्यकता होती, कंफर्मेशन मात्र बायोप्सी से होता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: बायोप्सी में जब आ जाता है कि ये कैंसर है तो उसके बाद हम लोग इसका स्टेजिंग करते हैं।
1: अच्छा।
0: और स्टेजिंग के आधार पर हम लोग इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटी डिसाइड करते हैं।
1: तो किस स्टेज तक मतलब आप सोचते हैं कि रिकवर कर सकता है पेशेंट?
0: एक्चुअली हम लोग ये भ्रांति है कि मुंह का कैंसर हो जाने से ये जानलेवा है, इसका इलाज संभव नहीं है, ये गलत है। स्टेज वन और टू में मुंह का कैंसर का क्योर रेट, 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। अगर फिर अगर एडवांस स्टेज हो जाता है तो ट्रीटमेंट तो हर स्टेज में हम लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन उसका रिकवरी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी जिसे मौत कहते हैं, मॉर्बिडिटी होता है उससे सफरिंग, ये बढ़ जाता। तो इलाज तो हम लोग हर अवस्था में पेशेंट को दे
1: तो हमेशा होती
0: है। पहले जो छोटा रहता है कैंसर मुंह के अंदर रहता है, वो बाद में गले में गांठ के रूप में फैल जाता है, अन्य ऑर्गेन में जा सकता है, उस अवस्था में इसका का इलाज मुश्किल होता है,
1: खतरनाक भी हो सकता है जब लंबे समय तक अगर आप इग्नोर किए हुए हैं तो। और अंत में वैसे श्रोता जिन्हें मुंह का कैंसर हो चुका है उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप ऐसे सेंटर में जाएं इलाज के लिए जहां आपको एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल सके। बहुत सारे सेंटर हैं, कैंसर सेंटर हमारे यहाँ है, या क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, या वो लोग जो मुंह के कैंसर का इलाज रेगुलर बेसिस पर करते हैं, तो उस कंडीशन में अंडर ट्रीटमेंट या ओवर ट्रीटमेंट नहीं होता है। और जहाँ सिस्टम हो कैंसर ट्रीटमेंट के, जैसे हमारे यहाँ है कि प्रथम सबसे बड़ा अच्छा इलाज है कैंसर का सर्जरी, स्टेज वन और टू में सर्जरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिकवरी भी होता है। तो इस स्टेज वन टू में कैंसर पकड़ा जाए और उस कंडीशन में उसका सर्जरी उनको ऑफर किया जाए और एडिक्वेट सर्जरी ऑफर किया, ये तभी संभव है जब वो प्रॉपर जगह पर पहुंचे। अदरवाइज अंडर ट्रीटमेंट, ओवर ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, रॉन्ग ट्रीटमेंट का खतरा बना रहा है।
1: बिल्कुल, तो ये सजगता के साथ उनको चूज करना होगा कि हाँ हमारे सही इलाज हो सकता है, वहाँ उनको पहुँचना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा ताकि वो
0: घबराने की बात नहीं है। इसका बहुत सारे पेशेंट में इसका रिकवरी बहुत अच्छा होता है, बशर्ते कि बहुत एडवांस स्टेज नहीं हो और कैंसर का बायोलॉजी खराब नहीं हो। कभी कभी बायोलॉजी पर भी उसका आउटकम डिपेंड करता है।
1: फिर भी लोगों को आशावान होना चाहिए और इसमें ये बहुत खुशी की बात है कि आपने बताया कि प्रथम दो चरण तक तो बिल्कुल उनको बचाया ही जा सकता है, लेकिन बाद में भी कोशिश करने पर
0: और सब ट्रीटमेंट मॉडलिटीज उनको ऑफर किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर सर्जरी ऑफर नहीं कर सकते एडवांस स्टेज में, तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दे करके हम लोग उनके मॉर्बिडिटी को कम करते हैं, मॉर्टिलिटी को डिले कर सकते हैं।
1: आज आपने मुंह का कैंसर कारण, लक्षण और उपचार पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए हमारी ओर से और हमारी श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मुंह का कैंसर कारण एवं उपचार, इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर शशि शेखर सिंह और उनसे बातचीत कर रहे थे संजय प्रसाद। बता दें कि इस जानकारी का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे।

0: Akashvani at 90.
1: श्रोताओं, सेहत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जब अचानक कोई बड़ी बीमारी घर में दस्तक देती है तो इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं टूटता बल्कि इलाज का खर्च अच्छे अच्छों की जमा पूंजी और पसीने छुड़ा देता है। एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं होता। लेकिन अब आपको इस मुश्किल वक्त में घबराने की जरूरत नहीं। आपकी इसी चिंता को दूर करने और आपके परिवार को सुरक्षा कवच देने के लिए सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि आपके परिवार की सेहत का भरोसा है। इस योजना से जुड़ने पर आपको और आपके परिवार को क्या क्या बड़े फायदे मिलते हैं ये बताते हैं आपको। अस्पताल में भर्ती होने पर आपको अपनी जेब से एक भी पैसा कैश नहीं देना होगा। अस्पताल का सारा खर्च सीधे सरकार उठाएगी। जेब में पैसे ना भी हो तब भी इलाज नहीं रुकेगा। वहीं छोटे मोटे बुखार से लेकर दिल के बीमारी, कैंसर और किडनी की समस्या समेत कई बड़ी और घातक बीमारियों का इलाज भी इस योजना के दायरे में पूरी तरह शामिल है। इतना ही नहीं, ये योजना केवल अस्पताल के बिस्तर तक सीमित नहीं है। भर्ती होने के 3 दिन पहले की जांच, दवाइयां और अस्पताल से छुट्टी मिलने के पूरे 15 दिन बाद तक की दवाइयों और डॉक्टर के फीस का खर्च भी इसी योजना में कवर होता है। तो फिर देर किस बात की, सेहत के मामले में लापरवाही कैसी। अगर आपके पास अभी तक ये जीवन रक्षक स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो आज ही जिम्मेदार घर के मुखिया का फर्ज निभाइए और इस योजना से जुड़िए। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना FM के 102.4 MHz पर।

झूम बराबर झूम। इस फिल्म का गाना राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। और श्रमिक श्रोताओं, इसी गाने के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner, along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from the Red Fort last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remain crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. He said strict legal action should be taken against those involved. Mr. Shah stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. He said that as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, Quad nations share the responsibility towards a free and open Indo-Pacific.
5: Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability.
4: In his statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the U.S. will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this. In his joint press statement, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi emphasized the importance of diplomatic efforts in ensuring free and safe navigation in the Strait of Hormuz as well as bringing stability to West Asia. Australian Foreign Minister Penny Wong said Quad has announced the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership. The Quad Foreign Ministers meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for the ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. Addressing a press conference after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said the meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
6: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation. The first pillar is maritime and transnational security. Two, economic prosperity and security. Three, critical and

0: FM के 102.4 MHz पर शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों, सभी श्रोता मित्रों को जोहार। लीजिए सुनिए आज इस कार्यक्रम में कुछ कुड़माली लोकगीत। कलाकार हैं वकील तांती और उनके साथी।

झारखंड के लोकगीत इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। कुड़माली झूमर कलाकार हैं, वकील तांती और उनके साथी। लीजिए सुनिए उनकी अगली प्रस्तुति।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। सभी श्रोता मित्रों को जोहार।
1: झारखंड के लोकगीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से।

किसान भाइयों, आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत पर्यावरण अनुकूलन चारे का प्रबंधन विषय से करेंगे, जिसे हम इको फ्रेंडली फूडर मैनेजमेंट कहते हैं। ये एक ऐसी कृषि और पशुपालन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जानवरों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक चारा प्रदान करना है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों अर्थात भूमि, जल और पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। किसान भाइयों, इसके लिए हम सर्वप्रथम जैविक और प्राकृतिक खाद का उपयोग करेंगे। चारे की फसलों जैसे मक्का, जई, नेपियर घास, इनको उगाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और हरी खाद का उपयोग करेंगे। ये मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए भी रखता है। इसके साथ ही हम जल संरक्षण और कुशल सिंचाई प्रबंधन भी अपना सकते हैं, जैसे चारे की खेती में ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पानी की भारी बचत होती है और जल भराव की समस्या भी नहीं होती है। इसके अलावा हम बहुफसली खेती अपना सकते हैं। चारे के उत्पादन में केवल एक फसल उगाने के बजाय हम फलीदार और गैर फलीदार फसलों को एक साथ उगा सकते हैं। उदाहरण के लिए मक्का के साथ लोबिया को एक साथ बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और प्राकृतिक रूप से भूमि की गुणवत्ता सुधरती है। इसके साथ ही हम फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के लिए रासायनिक दवाओं के बजाय नीम का तेल या जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से हम पर्यावरण के अनुकूल चारे का सफल प्रबंधन कर सकते हैं।

किसान भाइयों, आज की चर्चा में अब कुछ बातें सहकारी कृषि क्या है इस विषय पर। सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, इनका तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जहां किसान स्वेच्छा से अपने कृषि संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और मशीनरी को एक साथ मिलाते हैं। इसमें व्यक्तिगत भूमि का स्वामित्व बना रहता है, लेकिन सामूहिक रूप से खेती करके उत्पादन और लाभ को आपस में साझा करते हैं। जैसे संसाधनों की साझेदारी, छोटे और सीमांत किसान मिलकर उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि मशीनें थोक में खरीदते हैं, जिससे लागत कम लगती है। भूमि का आकार छोटे छोटे खेतों की सीमाओं को हटाकर एक बड़ा खेत बनाया जाता है, जिससे वैज्ञानिक तरीके से खेती करना और सिंचाई करना आसान हो जाता है। लाभ का वितरण इस प्रकार से की गई खेती के फसल की बिक्री से प्राप्त आय का सदस्यों के बीच उनकी भूमि और उनके द्वारा किए गए योगदान के अनुपात में बांट दिया जाता है।

किसान भाइयों, इस प्रकार आप भी सहकारी कृषि प्रणाली अपना सकते हैं, जिससे आपकी लागत कम लगेगी, बेहतर सौदेबाजी होगी, जिससे आय में वृद्धि होगी और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सरकारी सब्सिडी और आसानी से कृषि ऋण प्राप्त होगी।

ग्रामीण श्रोता मित्रों, अब कुछ बातें नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक की। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन अर्थात NDLM भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के पशुधन क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत सभी पशुओं को 12 अंकों का विशिष्ट पशु आधार नंबर दिया जा रहा है। ये योजना एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत पशुधन के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 35 करोड़ 9 लाख से अधिक पशुओं और करोड़ों पशुपालकों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य भारत की जलवायु के अनुसार सबसे अच्छी नस्लों और गुणवत्ता वाले जर्म प्लाज्म का प्रबंधन करना है। साथ ही पशुओं की बीमारी, मसलन खुरपका, मुंहपका और लंबी स्किन जैसी प्रमुख बीमारियों की वास्तविक समय में निगरानी करना और टीकाकरण ट्रैकिंग करना है। साथ ही पशु उत्पादों जैसे दूध, मांस आदि की गुणवत्ता को ट्रैक करके मजबूत व्यवस्था स्थापित करना है। और इस चर्चा के बाद अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक भोजपुरी लोकगीत।

0: शारदा सिन्हा से आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, और अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है इस समय फसलों में लगने वाले कीट एवं उनका प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर उदय कुमार प्रसाद, आइए इनसे बातें करते हैं। किसान भाइयों, आज हमारे बीच आए हुए हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दारीशाही पूर्वी सिंहभूम के कृषि वैज्ञानिक जो कीट वैज्ञानिक है डॉक्टर उदय कुमार प्रसाद जी। इनसे आज हम जानेंगे इस समय पौधों में लगने वाले कीट और उसके नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले आप हमें ये बताएं डॉक्टर साहब कि इस समय पौधों में जो लगने वाले कीट हैं वो किस प्रकार लगते हैं और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
1: किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि अगले महीने से, जून महीने से खरीफ फसल शुरू हो जाएगा, खरीफ का मौसम आ रहा है। किसान भाई उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो कुछ दिनों में तैयारी शुरू कर देंगे
0: जी।
1: क्योंकि मुख्य फसल जो है उसी में लगाया जाता है, खरीफ फसल में भी
0: जी।
1: मुख्यतः किसान यहाँ पर धान की फसल लगाते हैं, धान यहाँ का मुख्य है। कुछ ऊपरी टाँड जमीन में किसान भाई मकई, अरहर, तिल, उड़द इत्यादि लगाते हैं, जो थोड़ी कम मात्रा में होती है। और धान में एक है कि लगातार एक ही खेत में किसान भाई लगा रहे हैं कई सालों से,
0: बिल्कुल
1: अब एक ही तरह के धान लगा रहे हैं, उसके कारण जो है कीटों का प्रकोप संख्या लगातार बढ़ रहा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और उसके चलते नुकसान हो रहा है और उनके उत्पादन में ह्रास होते जा रहा है, गिरावट होते जा रहा है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: उसकी रोकथाम आवश्यक है ताकि उत्पादन बढ़ सके, किसानों को फायदा हो सके।
0: तो डॉक्टर साहब का कहने का तात्पर्य है कि आप एक ही तरह की फसल ना लें खेतों से, और अगर लें तो समय समय पर कीट नियंत्रण और इस तरह की जो आती हैं परेशानियाँ उसका आप उपाय भी करते रहें। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि खरीफ की मुख्य फसल धान में कौन कौन से कीट लगते हैं और वो नुकसान करते हैं किस प्रकार से?
1: धान के खेत में फसल में जो है कम से कम एक दर्जन कीड़े लगते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, मगर इस क्षेत्र में
0: जी
1: 4-5 कीट ही ऐसे हैं, कीड़े ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और करीब करीब हर एक खेत में, हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसका पहला है तना छेदक।
0: अच्छा।
1: किसान भाई जानते हैं तना छेदक है जो धान के बीच में एक सफेद मटमैला कलर का एक पिल्लू जैसा होता है।
0: अच्छा।
1: जो बैठा रहता है वो बीच के भाग को ही खा जाता है।
0: अच्छा।
1: और जब किसान जब खा जाएगा तो ऊपर का भाग सूख जाता है, और सूख किसान भाई देखते हैं कि ऊपर का सूख गया है, उससे बालियां नहीं निकलेंगी और नुकसान होने लगता है, जब खींचेंगे तो खिंचा भी जाता है
0: जी जी।
1: ये तना छेदक जो है इनिशियल स्टेज में बाली निकलने से पहले नुकसान करते हैं और काफी क्षति पहुंचाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। इसको डेड शर्ट भी कहते हैं।
1: डेड हर्ट करते हैं, जब हर्ट ऊपर जो भूरा भाग हो जाए, सूख जाता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो भूरा हो जाता है, मर करके, डेड मतलब मरा हुआ, डेड हर्ट इसको बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में, क्योंकि खींचेंगे तो खींचा जाएगा और पुआल की तरह हो जाता है।
0: ओ हो। अच्छा, और दूसरा कीट?
1: दूसरा कीट है साढ़ा कीट
0: जी।
1: एक कीट है, कुछ सब जगह तो नहीं लगता है पर इस क्षेत्र में, कई क्षेत्र में पाया गया है
0: जी।
1: एक कीड़े जब लग जाते हैं तो धान का फसल का बढ़वा रुक जाता है और जो है धान जो है वो फूलने लगता है, उसका बीज के भाग फूलने लगता है, जैसे प्याज की तरह फूलने लगता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और उसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो उसका बढ़ने की जो क्षमता है कम हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: और वो हो करके उसमें बालियां नहीं निकलती हैं।
0: अच्छा।
1: और किसान को काफी नुकसान पहुंचाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। और तीसरा जो हम जानना चाहेंगे?
1: तीसरा जो है, जो भी मुख्य है, काफी नुकसान पहुंचाता है, किसान भाई इसको बकिया के रूप में जानते हैं।
0: बकिया कीट।
1: हाँ, पत्ती को खा जाता है, पूरा खेत सफेद हो जाता है।
0: अच्छा,
1: हरा
0: अच्छा।
1: भाग को चाट जाता है, ऐसा कीड़ा है जो चबाता कम है, चाटता जाता है। वो उसका जो पत्ती का जो मीन रीब होता है वो रह जाता है और हरा भाग खत्म हो जाता है।
0: अच्छा।
1: इसके कारण जो है बढ़वार जो है, वृद्धि है, वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाता है और पौधे जो है वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जब वृद्धि नहीं करेंगे तो उसमें उत्पादन कैसे होगा।
0: अच्छा, और चौथा कीट कोई?
1: चौथा कीट है रस चूसने वाले कीड़े।
0: अच्छा अच्छा।
1: जो रस चूस लेते हैं, जो ऊपर से दिख जाते हैं पत्ती पर उसके, और पत्ती को रस चूस करके पीलापन ला देते हैं।
0: अच्छा।
1: कभी कभी बीमारी का है एहसास कराता है कि खेत में बीमारी लग जाता है, मगर इसको बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कीड़े जो उसको रस को चूस लिए, जिसके कारण ही पीला पड़ गया है और वृद्धि उसकी रुक गई है।
0: अच्छा।
1: और वृद्धि नहीं हो पाती है तो उसमें बालियां नहीं निकलती, निकलती भी तो बहुत कमजोर निकलती है और उत्पादन नहीं के बराबर हो पाता है।
0: जी, मतलब ये मधुआ की टाइप से होता है।
1: हाँ, उसी ढंग का होता है जो चूस करके वो मधु की तरह कहीं कहीं बूंद बूंद छोड़ देता है, कभी चमकता है, तो इसलिए उसको कहते हैं।
0: जी जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी तरह से किसान भाइयों को समझाया कि आपके इस समय जो फसल लगे हुए हैं उसमें कौन कौन से कीट लगेंगे और उनके लक्षण क्या हैं। अब हम किसान भाइयों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि इन कीटों का वो सफल नियंत्रण कैसे करें और अपने फसलों को वो किस प्रकार से बचें।
1: कीड़े हैं जो पत्ती को खा जाते हैं, जैसे बकिया कीट वगैरह है, तो उसके लिए हम लोग जो है थोड़ी सी कम ताकत वाली दवा देते हैं, जो ऊपर ऊपर जो होता है अंदर की दवा नहीं देते हैं। इसमें क्लोरपाइरीफोस या क्विनोलिफोस तरल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से, या धूल कभी कभी हम लोग पाउडर भी देते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करते हैं, छिड़काव करते हैं या डस्टिंग करते हैं, तो कीड़े का नियंत्रण हो जाता है, उत्पादन ज्यादा होता है।
0: जी, और कोई कीटनाशक हो तो?
1: अभी कीटनाशक बाजार में आए हुए हैं जो कि अरासायनिक, कुछ किसान भाई चाहते हैं कि रासायनिक कीटनाशक उपयोग नहीं करें, कम से कम।
0: बिल्कुल।
1: एक वो है स्पाइनोसेड।
0: अच्छा अच्छा,
1: अभी थोड़ी सस्ती आ गई, पहले बहुत महंगी थी।
0: जी जी,
1: 1.7 SC के पावर में आई हुई है।
0: अच्छा,
1: इसका 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करेंगे तो इससे भी कीट का नियंत्रण सफलतापूर्वक हो जाएगा।
0: जी अच्छा, डॉक्टर साहब बिना रासायनिक कीट के कीट नियंत्रण क्या सफलतापूर्वक किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। पहला उसके लिए है कि किसान भाई शायद जानते होंगे कि समेकित कीट प्रबंधन
0: कर सकते
1: करते हैं,
0: हैं
1: हम करते हैं, तो एक क्रमवार स्टेप वाइज कीट का नियंत्रण धीरे धीरे करते हैं, अंत में पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। तो लगातार करने पड़ते हैं। मैंने ये बताया किसान भाइयों को कि बीट का चयन अच्छे से करें, खेत की जुताई करें, और जो गर्मी में जो फसल आप लगाते हैं उसके उसमें भी उसको स्टम्प को हटा दें। ये सब करने से IPM के तहत ही आता है, तो रासायनिक कीटों का प्रकोप कम से कम करना पड़ता है। चूना डाल देंगे, अच्छे घुलने वाला चूना डाल देंगे।
0: जी जी।
1: और उस घोल को जो मिला है उसको 10 गुना बना लेंगे।
0: अच्छा।
1: तो ये जो घोल है
0: जी
1: कीटनाशक है, हर एक फसल में हर एक समय में देने के लिए तैयार है, हर एक कीड़े को नियंत्रण करता है, ये मारता कम है, दूर भगाता है, खाने अरुचि पैदा करता है, खाने नहीं देता है, या जो लोग खा लेते हैं उसके वंश वृद्धि को रोक देता है, वंश वृद्धि नहीं करने देता है।
0: बिल्कुल, तब तो ये बहुत ही अच्छी उपाय आपने बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रासायनिक और रासायनिक घरेलू सभी तरह के कीट नियंत्रण के बारे में बताया। हम अंत में किसान भाइयों की तरफ से आपसे जानना चाहेंगे कि अंत में कोई टिप्स हमारे किसान भाइयों के लिए आप अगर देना चाहते हैं तो।
1: पहला टिप्स होगा किसान भाई हर एक 3 साल पर अगर कंपोजिट वैरायटी है तो अपने बीज को बदल दे।
0: अच्छा।
1: हाइब्रिड लगाते हो तो हर एक साल बदलना उनकी मजबूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और कंपोजिट भी लगा रहे हैं
0: जी
1: तो हर एक साल 3 साल पर कम से कम बीज को बदल दें, क्योंकि जो बीज है उसमें उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन नहीं होता है, कीड़े या बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है।
0: अच्छा।
1: उसको रोकना जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो किसान भाइयों आपने जाना कि इस समय जो पौधे में लगने वाले कीट हैं उनके प्रकार, उनके बारे में कैसे जानेंगे और उनका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं रासायनिक से भी और घरेलू प्रबंधन से भी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। हम समझते हैं हमारे किसान भाई इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, किसान भाइयों को भी धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, इस समय फसलों में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण विषय पर जानकारी दे रहे थे कीट वैज्ञानिक डॉक्टर उदय कुमार प्रसाद। और अब एक संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: और अब कुछ बातें मौसम की। किसान भाइयों, जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज का अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सूर्योदय का समय सुबह 5:02 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 6:20 पर होगा। नमी का स्तर 26% है और वायुमंडलीय दबाव 1001 के स्तर पर है। जमशेदपुर में इस समय हल्की धूप भी खिली रहेगी। 77% आर्द्रता और 51% न्यूनतम, 2 से 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। और अब अंत में कुछ बातें सर्पदंश की घटनाओं पर। ग्रामीण श्रोता मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि सर्पदंश की घटना के बाद लोग ओझा तांत्रिक या बैगा गुनिया से झाड़ फूक कराने लगते हैं। श्रोता मित्रों, ये जानलेवा है, ये अंधविश्वास है। सांप के काटने पर अंधविश्वास में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां उसे एंटी वेनम दिया जाता है, क्योंकि सर्पदंश का सही समय पर इलाज ही एकमात्र बचाव है। मित्रों, भारत में सर्पदंश और उससे जुड़े अंधविश्वासों का गहरा प्रभाव है। अज्ञानता, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक देरी शिक्षा की और देरी से पहुंचने के कारण लोग आज भी पारंपरिक उपचारों और टोटकों पर भरोसा करते हैं, जो कि ये गलत है। और इसके साथ ही हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

0: दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
1: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना। और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमें एशिया कप के लिए जापान रवाना। महिला टीम में 6 और पुरुष टीम में राज्य के 2 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से देश की आबादी के ढांचे में हो रहे बदलावों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में जनगणना आयुक्त सहित कई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और अर्थशास्त्री शामिल किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से बदलती आबादी देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए एक गंभीर चुनौती है। गिरिडीह में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी, बिजली और शहर की सफाई का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। केंद्रीय मंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं में तेजी लाने और अधूरी सड़कों के मामले की जाँच करने के निर्देश दिए।
2: लगभग 7-8 सड़क और ये कई बार ये चर्चा हुई है और इसके तहत कमेटी इस बार जैसे डीसी को कहा गया है कि इसके जितना जल्द हो सके जांच करके आप भेजें रिपोर्ट। जो काम नहीं कर रही है वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है किसी को उसे ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और वैसे लोगों को आइंदा से भविष्य में काम न मिले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
1: बैठक के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि विकास कार्यों की कमियों को जल्द दूर किया जाएगा।
3: तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई, कुछ योजनाओं की प्रगति संतोषप्रद है। तमाम विभागों को निर्देशित किया गया और मैं यह मानता हूं कि इस बैठक के फलाफल जिले के लिए बेहतर है।
1: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। उन्होंने वर्ष 2026 में हुए 80 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस टेंडर में भी भारी गड़बड़ी का दावा किया है। श्री मरांडी ने ट्रेजरी घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जांच के बावजूद बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है।
4: राज्य में जो बैठे हुए सरकार है काम नहीं करती बल्कि सरकार कमाने में लगी। आप सबके ध्यान में है ट्रेजरी घोटाला जो लगातार जिसके पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते सरकार से। क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं तो फिर करप्शन कैसे समाप्त।
1: रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि काउंसिल में छात्रों से नामांकन और परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।
5: फार्मेसी एक्ट अगर 2015 से देश भर में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लागू हुआ है तो आखिर झारखंड में वो एक्ट क्यों नहीं लागू, इसका भी जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। और जिस प्रकार से झारखंड में जो चल रहा है, झारखंडी बच्चों के जो सपने बेचने का काम कर रहे हैं, हम उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष की 2026-27 की कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की संख्या बढ़ाकर 5000 करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन योजनाओं का लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड की औलंजा पंचायत में इस योजना ने गरीब महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई है।
6: हमको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। इसमें हमको गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा भी मिला है, उससे हम लोग खाना बनाते हैं। और अब है कि गैस पे खाना बनाते हैं तो हम लोग का समय भी बचता है, बच्चे लोग को टाइम पर हम लोग कुछ भी बना के दे सकते हैं, लंच वगैरह भी देते हैं।
7: गैस अब मिल गया तो उससे समय भी बचता है, खाना जल्दी बनता है, बच्चा सबको समय से खाना दे पाते हैं।
8: जाते थे पहले लकड़ी झुड़ी तोड़ के आना पड़ता था, अब गैस मिल गया तो बहुत ही आराम है खाना बनाने में, बना के आराम से खा सकते हैं, खा रहे हैं।
1: इधर रांची में भी इस योजना के बाद महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे की परेशानियों से बड़ी राहत मिली है। अब गैस पर खाना बनाने से महिलाओं का समय आधा से भी कम लग रहा है। इस बचे हुए समय का उपयोग महिलाएं अन्य कार्यों और स्वरोजगार में कर रही हैं।
9: हम पारो देवी और गैस भी हम उठाते हैं और सरकार घर दिया है, राशन देता है, सब सुविधा है। हम गैस उठाते हैं हर महीना, गैस पर खाना उना बनाते हैं, लकड़ी में नहीं बनाते हैं, जब से गैस मिला है गैस बनाते हैं।
1: खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जन शिकायत सेल और टेक्निकल टीम की मदद से इन फोनों को खोजा गया था। बकरीद त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खूंटी नगर भवन में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन और एसपी ऋषभ गर्ग ने सभी समुदायों से संवाद किया। प्रशासन ने मस्जिदों में बिजली, पानी और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर पाकुड़ में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने कल राज्य के 11 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 महिला और पुरुष हॉकी टीमें एशिया कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हो गई है। जापान में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम में झारखंड की 6 प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों और पुरुष टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी, 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन ने बीते दिनों रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में शिरकत किया। न्यायालय परिसर पहुंचने पर जिला प्रशासन एवं न्यायालय परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया तथा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जोनल जज रामगढ़ सह एडमिनिस्ट्रेटिव जज रामगढ़ न्यायाधीश दीपक रोशन, न्यायाधीश हाईकोर्ट झारखंड ने बताया कि वनरेबल विटनेस जो होते हैं वैसे केस जिनको सोसाइटी के सामने लाने से मना किया जाता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही आदेश निर्गत किए थे।
2: यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ का अभाव था, जो वल्नरेबल विटनेस जो होते हैं, ये उस तरह के विटनेस होते हैं एक जो सोसाइटी के सामने जिसको लाने से मना किया गया, जैसे पॉक्सो एक्ट के विक्टिम्स या 376 जो ओरिजिनल था उसके विक्टिम्स, जिससे जिस जो अगर आ जाएंगे तो हमारा सोसाइटी अभी भी वो नहीं है जो कि ऊपर माने बहुत ज़्यादा ओपन है, वो अभी भी विक्टिम को ही एक्यूज समझता है।
1: न्यायालय में पेपरलेस वर्क एवं लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन जैसे प्रश्नों के जवाब में न्यायाधीश ने बताया कि पेपरलेस का काम अब न्यायालय में शुरू हो गया है। प्रत्येक जज अपने अपने कामों को अगर करे तो लंबित मामले घटेंगे।
2: पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक जज अपना अपना काम करे तो लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% है अभी पूरे हिंदुस्तान में, उसका सरकार भी कोई दोषी नहीं है और जजेस भी दोषी नहीं।
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सदर अस्पताल में पिछले दिनों रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा नर्सों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हमारे रामगढ़ जिले में प्रतिमा 300 से ज्यादा सीजेरियन ऑपरेशन होते रहते हैं, जिनका स्क्रीनिंग फर्स्ट हैंड में यह हमारी नर्सें ही करती हैं। हमारे अस्पताल को जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उसमें इन नर्सों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3: विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्वास्थ्य विभाग अति संवेदना के साथ लोगों से बातचीत करते हुए उनकी तकलीफ में उनकी बातों को सुनना और सेवा देना, तो संवेदना के साथ सेवा देने वाले इस विभाग में जो कुछ भी हमने उपलब्धियां की, उस सेवा में जो सफलताएं मिली उसकी रीढ़, उसकी बुनियाद हमारी बहनें जो ANM हैं, GNM हैं, स्टाफ नर्स हैं, ये लोग हैं।
1: मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित विभिन्न अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे जिले में प्रहरी पहल की शुरुआत की गई है।
4: इस पहल के तीन हिस्सा हैं, पैदल गश्ती, अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान एवं एंटी क्राइम चेकिंग।
1: रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत के ताबड़तोड़ कार्रवाई एवं विशेष पहल अपराध नियंत्रण में सहायक सिद्ध हुआ है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
0: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आलोक।

0: मित्रों, विगत 17 से 24 मई तक साइंस समर कैंप का सफल आयोजन चांडिल क्षेत्र अंतर्गत चिलगु चकुलिया स्थित सोबरन स्मृति ट्रेनिंग सेंटर में किया गया, जिसमें निकटवर्ती विद्यालयों के लगभग 60 बच्चे शामिल हुए और खेल खेल में विज्ञान से जुड़ी कई दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त की। इस समर कैंप में ट्रेनर्स के तौर पर हरियाणा से ईश्वर नास्तिक और सुभाष अनुराग के अलावे श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के गणित विभाग के डॉक्टर तरुण कुमार महतो, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस विंग की शालिनी ओझा मैडम और आरंभ युवा मंच के अंकुर शाश्वत मौजूद रहे।
1: वो छुट्टी भी मनाएंगे, सीखेंगे भी, और उसके साथ क्या होगा, ज्ञान और विज्ञान की बातें सीखने को मिलेगा। सुबह सुबह आप लोग आए, योगा वगैरह हुआ, बॉडी फ्लेक्सिबल हुआ, करने कराया। वो क्यों कराया था? वो इसलिए कराया था, अभी आपका जो शरीर है ना, वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, मुड़ेगा, काम करेगा, उसमें एनर्जी होगी, ताकत होगी। लेकिन अगर हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे और उम्र बढ़ेगा, तो हमारे शरीर का काम करने का ताकत, ऊर्जा, हड्डियों की बढ़ने की क्षमता धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगा। ये सारा चीज कैसे काम करता है?
0: इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर विकास कुमार थे।
2: बचपन में कैसे आप, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग मीडियम हो सकता है, तो उसमें से एक हमको लगा कि समर कैंप भी एक पार्ट है, जहाँ पर बच्चों को कुछ कुछ हम लोग, जैसे हमारे साथ में जो साथी सुभाष भाई आए हैं, बहुत सारे प्रयोग वगैरह पिछले 3-4 दिन से बच्चों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बाबा या चमत्कार करते हैं उसके पीछे का आखिर विज्ञान क्या है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग जो है घुमंतु पुस्तकालय भी पूरे कोल्हान क्षेत्र में चलाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं, जहाँ जहाँ, क्योंकि किताबें पढ़ने का ट्रेंड खत्म कम हुआ है, काफी लोग कम पढ़ रहे हैं, अटेंशन स्पैन भी कम हुआ है, तो कोशिश कैसे किताबों तक हम लोग लेके जाएं बच्चों के बीच में, वो काम होता है। हमने साइंस फिल्म फेस्टिवल पूरे झारखंड में जो है, एक लोहरदुग्गा में, बोकारो में, चतरा में, ऐसे बहुत सारे साइंस फिल्म फेस्टिवल भी हमने ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हम लोग एक ट्रेनिंग, यहाँ पर वर्कशॉप भी चलता है, यूथ जो सोशल वर्क काम कर रहे हैं उनका कैसे हम लोग और कंस्टिट्यूशन वैल्यूज लेके आए, कैसे उनका पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हो, उस पर भी यहाँ पर एक वर्कशॉप चलता है लगातार। एक साल का पूरा एक कोर्स होता है जिसमें 30-35 दिन हम लोग पूरे ट्रेनिंग कराते हैं 30-35 दिन बच्चों का। तो ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे ये सेंटर भी जो है कि यहाँ पर कैसे जो भी अपने शहर की भी जो अलग अलग कॉलेजेस है कि वहाँ के भी बच्चे आए उनके खुद।
0: 22 मई शुक्रवार को श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सेवा योजना के 15 वॉलंटियर अपने कोऑर्डिनेटर शालिनी ओझा के नेतृत्व में कैंप के बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और योगाभ्यास के साथ साथ कई क्रियाकलाप भी कराए। तरुण सर ने विज्ञान से जुड़े कई प्रयोग दिखाए।
3: आप लोग जो 9-10 के बच्चे हैं, गणित पढ़ते हैं ना, गणित गणित कितने जन को अच्छा लगता है? इसको क्या बोलते हैं बोलिए ना, इसका क्या नाम है बोलिए? सिलेंडर, बेलन, बेलन। इसके अंदर जो खाली जगह है ना, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम। ये क्या है जी? ये क्या है? कौन कौन? शंकु, समझे? इसका आयतन का जो फॉर्मूला है क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ये जो गोलाई है इसका जो डायमीटर है व्यासार्ध, आर क्या है? व्यासार्ध है, और एच क्या है? हाइट है। और इसके देखिए, ये जो बेलन है और ये शंकु है, दोनों का हाइट एक है, और ये जो गोलाई है ना, ये और इस शंकु का गोलाई दोनों लगभग एक है। तो ऊंचाई और ये गोलाई जो है दोनों अगर बराबर होगा तो इसका आयतन क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब इसका जो आयतन है उसका 1/3 होता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली दिखाएंगे अभी।
0: इस दौरान समर कैंप को लेकर शालिन ओझा से हमने बातचीत की।
4: आज यहाँ बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा हमारा, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया है गांधी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज के द्वारा। ये समर कैंप मिसाल रहने के बाद पहली बार में पता लगा कि ये ऐसी चीज, इतनी अच्छी चीज हो रही है यहाँ पर, जहाँ पे बच्चों को हर तरह की चीजें, हर तरह की स्किल्स चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये पहल बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे गाँव को डेवलप करने में, गाँव के बच्चों को डेवलप करने में। ऐसी पहल करना हम सबकी एक हमारा दायित्व है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चों को भी, एनएसएस वॉलंटियर्स को भी जोड़ पाई इस इनिशिएटिव में। और हमने आज 22 तारीख को एक कैंप के द्वारा ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों को ट्रेन किया है, जैसे नेचर से

0: कैसे करते हैं, स्टोन पेंटिंग थी, लीव्स में पेंटिंग कैसे कर सकते हैं, विदाउट ब्रश कैसे कर सकते हैं पेंटिंग। तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इसमें। इसके अलावा भी हमने कुछ फन एक्टिविटीज़ की बच्चों के साथ। ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, जो सिर्फ बुक किताबी नॉलेज से बाहर निकल कर कितने प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को समझे, तभी हम साइंस और मैथ्स में एक्सेल कर सकते हैं और चीज़ों को जो लिखी हुई बातें हैं उनको प्रैक्टिकली यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, बच्चों ने इन्जॉय भी किया, म्यूज़िक था, फ़न था, बहुत ही अच्छे से बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी यहाँ पे। और काफ़ी टाइम से बहुत एक्टिव लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, हमारे मेम्बर्स जो है, और इन रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी बहुत जो मेम्बर्स हैं वो हरियाणा से कोई सर आए हैं, और जो सर हैं वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं यही चाहूँगी कि फ्यूचर में हम हमेशा ये कार्यक्रम करते रहें।
1: एनएसएस के दो वॉलंटियर से भी इस प्रोग्राम को लेकर हमने बातचीत की।
2: सबको जोहार, मेरा नाम अर्पण तेड़ू है और मैं श्रीनाथ यूनिवर्सिटी से आया हूँ। इस इंस्टीट्यूशन में सेंटर में हमको एक अच्छा मौका मिला कि हम इस रूरल एरिया के बच्चों को मिले और हम देख सके कि इधर कितनी सारी, हमें जैसे कि पता है रूरल एरियाज़ में कितने मुश्किलें रहते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर और बहुत कुछ को लेकर। तो हमें इस सेंटर से सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लगाया कि आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे बच्चों को बुलाकर उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाएं। जैसे हमने एज अ ग्रुप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई, जैसे सबसे पहले योगा का सेशन हुआ, उसके बाद हमने अलग अलग ग्रुप्स में सब बच्चों को अलग अलग चीज़ें करवाई, जैसे पेंटिंग वगैरह और फोटोग्राफी की कुछ कुछ टिप्स देना और गेम्स वगैरह करवाया। उनमें बच्चों की रुचि देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा कि सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और सब इतने जानने को लेकर बहुत इच्छुक हैं। तो ये सब देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी भी जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सब बच्चे इतने घुल मिलकर इतने अच्छे से ध्यान देकर सब मज़े ले रहे हैं, मैं और मेरे बहुत सारे साथी बिल्कुल खुश है और हम ऐसा मौका और आगे पाना चाहेंगे।
3: मैं मधुरमा चक्रवर्ती, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, एनएसएस यूनिट, इवेंट कोऑर्डिनेटर, और आज हम आए हैं यहाँ पे यहाँ के बच्चों को साइंस के बारे में प्रेरित करने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें बताने के लिए। हमारा ये मोटिव रहा है कि हम यहाँ के बच्चों को जितना हो सके साइंस के बारे में प्रेरणा दे सके। पहली बार मैं ऐसे रूरल एरिया में आई हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है उस चीज़ के बारे में। मैं यहाँ के बच्चों से भी मिली, इनसे बहुत सारी बातें की, इन्हें कई प्रकार के एक्टिविटीज़ भी करवाए और मुझे बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा भी लगा है।
1: कैंप में शामिल रहे कुछ बच्चों से भी हमने बातचीत की।
4: कहाँ से?
5: एदलबेड़ा।
4: कौन स्कूल में पढ़ती हूँ?
5: UMS सहरबेड़ा।
4: कौन क्लास में हूँ?
5: 8।
4: यहाँ पर समर कैंप जो हो रहा है साइंस का, क्या कुछ बताया गया, दिखाया गया, क्या सीखा तुमने?
5: मैंने मतलब कि वैसे तो सर लोग बहुत सिखा दिए हैं, योग, ड्राइंग, बहुत मतलब ऐसे सिखा दिए।
4: नई नई चीजें क्या सीखने को मिली?
5: योगा और ड्राइंग भी उतना नहीं आता था पहले।
4: पढ़ाई से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड?
5: हाँ, हाँ।
4: क्या क्या बताया, कुछ प्रयोग हुए?
5: हाँ।
4: क्या कुछ हुआ तुमने किया?
5: नहीं, मैथ का हुआ, मैथ का जादू दिखाया गया।
4: दो तीन दिन पहले भी कुछ कुछ हुआ था ना?
5: हाँ,
4: स्कूल के स्कूल में जाके?
5: हाँ।
4: क्या दिखाया, जादू वाला दिखाया?
5: हाँ,
4: था
5: जादू वाला।
4: कि क्या ये जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं?
5: हाँ।
4: विज्ञान है।
5: हाँ।
6: मेरा नाम अर्शन दुबई है, मैं UMS सहरवेड़ा का छात्र हूँ।
4: कौन क्लास में?
6: मैं 7 क्लास का छात्र हूँ। आज मुझे यहाँ पर आके बहुत ही खुशी हुई। फिर कुछ एक्टिविटीज किया गया, फिर कुछ मैम सर आए थे, उन्होंने विज्ञान के बारे में कुछ दिखाया, योगा कराया और बहुत ही मौज मस्ती हुई इसी के साथ।
4: मैंने क्या क्या मतलब इस तरह से आगे भी होगा तो? हाँ। आओगे?
6: आगे भी हम आएंगे।
4: पढ़ाई भी ऐसे ही जारी रखोगे?
6: जी।
4: अच्छा, आप जो कुछ भी जादू टोना होता है, जो चमत्कार दिखता है, वो क्या है? जादू है, चमत्कार है या कुछ और है?
6: वो सिर्फ साइंस है।
4: पढ़ लिख कर आपको क्या बनना है?
6: मुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है।
4: कौन डिपार्टमेंट में जाना है? एजुकेशन की हेल्थ,
6: पुलिस।
4: उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है?
6: मुझे तो वैसे 12th के बाद ग्रेजुएशन करके UPSC की तैयारी करना है।
7: मेरा नाम सपना कलिंदी, कल्याणपुर चिरगु स्कूल।
4: कौन क्लास में?
7: 10।
4: क्या कुछ नई नई चीजें आपको जानने को मिली? क्या क्या?
5: ड्राइंग बनाना।
4: ड्राइंग पहले नहीं बनाती थी क्या?
5: बनाती थी।
4: लेकिन साइंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें देखने को मिली, नई नई चीजें? तो जादू का सच क्या है, जानने को मिला?
5: जादू का सच
4: क्या है? ये विज्ञान है।
5: मेरा नाम श्रद्धा कालिंदी है, हम कल्याणपुर स्कूल से आए हैं।
4: कौन क्लास में?
5: 10।
4: तो यहाँ साइंस समर कैंप में क्या कुछ देखने को सीखने को मिला?
5: साइंस समर कैंप में हमें सीखने को मिला कि जादू है ये सब विज्ञान के कारण होता है, और सब भूत वगैरह कहते हैं वो सब झूठ है।
4: इसके अलावा खेल खेल कुछ हुआ, कुछ और? हाँ। आप लोगों को टास्क दिया गया कुछ? हाँ। बनाने को?
5: हाँ, हमें ड्राइंग बनाने को दिया गया।
4: ड्राइंग इससे पहले बनाती थी?
5: हाँ, बनाते थे।
4: अभी देखे ना, आपका कुछ ड्राइंग बनाई थी?
5: हाँ, हमें थोड़ा बहुत।
4: क्या बनाई?
5: बोतल।
4: अच्छा, ये जो खाली पड़ा बोतल को आपने पेंट किया, तो आपको आगे पढ़ाई लिखा करके क्या करना है, क्या बनना है?
5: फिजिक्स में।
4: फिजिक्स में डिप्लोमा?
5: हाँ।
4: माने इंजीनियरिंग में?
5: हाँ।
4: जाना है।
5: हाँ।
4: इसमें ट्रेनर के तौर पर सुभाष अनुराग जी हरियाणा से आए हैं। आप इस इलाके में पहली बार आए हैं मुझे लगता है, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, बच्चों के बीच क्या देखा आपने, बच्चों में क्या उत्कंठा, क्या अभिलाषा है, और क्या यहाँ पर स्कोप भी नजर आ रहा है?
7: जी, यहाँ पर देखा कि बच्चे हैं, जैसे हर जगह बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है कि जानने की इच्छा क्षमता, लेकिन आसपास उनके जो माहौल होता है उसकी वजह से वो उनकी जो इच्छा है और जानने की शक्ति है वो कम पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। तो हम जैसे देख सकते हैं कि आदिवासी एरिया है और आसपास पेरेंट्स हैं या स्कूलों की जो सरकारी स्कूल हैं उनके जो टीचर्स हैं वो उतना अच्छा इनको गाइड नहीं कर पाते शायद, जैसा कि शहरों में बच्चों को कर पाते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी हो उनकी जानने की क्षमता में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हमने इनको प्रयोगों को दिखाया और थोड़ा सा उनको हमने उकसाया तो उनकी जिज्ञासा और उनका जो ज्ञान है और प्रतिभा है वो निखर कर सामने आई। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रतिभा और ज्ञान जो निखर कर सामने आया है वो बस 4 दिन का एक मोटिवेशन बन के ना रह जाए और वो आगे भी चलता रहे। तो इसके लिए और भी ऐसे प्रयास समय समय पर करते रहने चाहिए और साथ में उनके पेरेंट्स हैं, उनका जो माहौल है आसपास और जो गांव है वहां भी कुछ ऐसी सभाएं कर दी जाएं ताकि वैज्ञानिक चेतना वो बढ़े और किस्मत, भाग्य, भूत प्रेत, बाबा, जन्म जन्मांतर, इनके ऊपर हम विश्वास करना छोड़ दें, बल्कि हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर निकाल सकें ज्ञान के माध्यम से और वैज्ञानिक चेतना के माध्यम से, तो ये मेरा एक सपना है जो मैं चाहता हूँ कि साकार हो हमारे प्रयासों से। और जितने भी यहाँ ये जो सेंटर है, यहाँ पर जितने भी सहयोगी काम कर रहे हैं उनके प्रयासों से।

0: चांडिल क्षेत्र के चिलगु चकोरिया स्थित सोवरन स्मृति ट्रेनिंग सेंटर में गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड सोशल चेंज के तत्वावधान में विगत 17 से 24 मई तक साइंस समर कैंप का सफल आयोजन किया गया। आलोक कार्यक्रम के इस अंक में आप सुन रहे थे उसी पर आधारित ये विशेष रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुतकर्ता राकेश रमन, ध्वनि अंकन एवं वाचन स्वर शशांक शेखर का। जोहार।
1: आलो
2: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आलोक। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपकी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुना अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, संगीत निर्देशन वाइट नॉइज कलेक्टिव्स का था, फिल्म थी 21। कबीर सिंह इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने, आवाज़ अरमान मलिक की है।

तेरे इश्क में इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने, धुन बनाई थी AR रहमान ने, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। विशाल मिश्रा और प्रतीक्षा श्रीवास्तव की आवाज़ों में लीजिए सुनिए राजशेखर का लिखा गीत। संगीत निर्देशन जस्टिन प्रभाकरण का है। फिल्म है आप जैसा कोई।

जरा हटके जरा बचके इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज़ों में आपने सुना स्त्री 2 फिल्म का ये गीत।

बोल थे राजशेखर के, फिल्म थी एनिमल, आवाज़ और संगीत निर्देशन विशाल मिश्रा का था।

स्काई फोर्स इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें अरिजीत सिंह और अफसाना खान की थी। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं ओ रोमियो फिल्म का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।

0: फिल्म ओ रोमियो के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये कुछ पेठी है मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
5: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
6: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
5: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
7: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
8: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीब

0: मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: Mannheim.
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद।
1: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
2: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलाबोरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम

0: सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है, तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें। और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं, और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है।
1: जी
0: सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलोबरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने चार पांच मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो
1: जी
0: हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम आईसीएमआर के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें, और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो आईसीएमआर का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि वे जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8 से 9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है,
1: कितनी
0: उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है, और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे
1: जी
0: करें कि
1: जी
0: भाई आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम आईसीएमआर के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
1: जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खास तौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ आईसीएआर की तरफ से कुछ काम हो रहा है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने के, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है, और मसूर की 2, तथा चना और फावाबीन की 1-1 किस्म है।
1: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है।
0: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये मान लिए आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको आईसीआर में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक

0: होते हैं, पब्लिक एनजीओ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रेड स्टील उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी एनएफएसएम में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा रेडियो के माध्यम से और हमारे केवीके जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय आईसीआर के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल, तो आईसीएमआर और आईसीएआर की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे। जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
0: धन्यवाद।
1: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल आईसीएमआर में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर प्रियंका बंसल। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहां बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाएं जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें आईसीएआर जो है वो अपने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं, और उन्हीं चीजों को हम उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है वो आईसीएमआर टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
2: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है।
1: जी, तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
2: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
1: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में।
2: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है, कि फसल तो बन गई मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल News on AIR Official और हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो
0: जी हाँ, कौन बोल रहे हैं दोस्त?
1: सुनील कुमार महापौर।
0: सुनील कुमार महाकुड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं भाई?
1: ठीक है मैडम, बहुत गर्मी हो रहा है मैडम, इधर बहुत गर्मी।
0: जी हाँ, सही कहा आपने कि गर्मी हर जगह हो रही है, क्योंकि जैसा कि हमने तो पहले भी बताया है ना कि जंगलों की कटाई जिस रफ्तार से हो रही है कि मौसम जो है इस कदर बदल रहा है।
1: जी,
0: गर्मी तो पहले भी पड़ा करती थी, आपने तो कई सावन देख लिए हैं, और आज आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है। सुनील भाई, आज के हमारे इस कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैडम ये वाला सुना दीजिए ना, भाई बहन का जो।
0: हम आपकी फरमाइश अब तक जरूर लेकर आएंगे।
1: मैडम
0: जरूर लीजिए बच्चों का नाम।
1: रुपेश कुमार महाकुड़, तपेश कुमार महाकुड़।
0: तो चलिए हम आपके दोनों बच्चों के साथ रुपेश कुमार महाकुड़ और तपेश कुमार महाकुड़ के साथ सुनवाते हैं आपको हम अपने सुनील कुमार महाकुड़ को फिल्म भाई बहन का ये गीत।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो मैम, मेरा नाम कुमार वीर सिंह है और मैं झारखंड के जमशेदपुर में रहता हूँ।
0: कुमार वीर सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं दोस्त?
1: यस मैम, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं?
0: जब हमारे श्रोता इतने बढ़िया रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम भी बहुत अच्छे हैं और हमारी पूरी यूनिट, हमारी पूरी टीम भी बहुत अच्छी है।
1: यस मैम, और मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम प्रसारण करना शुरू कर दिया।
0: जी हाँ
1: क्योंकि अब मैम देखिए, बहुत सारे जो पुराने कार्यक्रम होते हैं ना,
0: जी हाँ
1: वो सारे कार्यक्रम से लगाव हो जाए।

0: अपने घर में रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका ये मैसेज हम अपने तमाम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
0: यस मैम।
1: वीर सिंह, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में?
0: मैम मुझे सुनना है लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, वो वाला गाना मुझे सुनना।
1: जरूर, हम आपकी फरमाइश आप तक लेकर आते हैं और अपने तमाम श्रोताओं के साथ आपको सुनवाते हैं फिल्म मासूम का ये गीत।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अजय सुनिए, मैं जमशेदपुर कदमा से नटराज बात करता हूँ।
0: नटराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पहले एपिसोड में।
1: हमको हेलो फरमाइश में निकाह का सलमा आगा का गाना सुना दीजिए, दिल के अरमां आंसुओं में बागे।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, और इस गाने को जिस बखूबी से सलमा आगा ने गाया है ना,
1: गाना सुन के रोना आ जाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल भर आता है।
1: उसको सुना दीजिएगा। हम हेलो फरमाइश फोन किया 2-3 बार लगा, अभी आप बोला यही नंबर में होगा तो हमको

0: हुआ।
1: जी हाँ, और ये आपका प्रोग्राम है और आप प्रोग्राम में जरूर शामिल हुई।
0: शामिल होने के लिए तो तैयार है आपका, मैं पुराना साथी आलोमन भवन, उसी समय से बहुत दिन से मैं रेडियो का जीवन साथी है रेडियो मेरा।
1: जी हाँ, सही कहा आपने कि आप जैसे श्रोता हैं तब तो आकाशवाणी आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और आज 90 साल पूरे कर चुका है।
0: 90 साल पूरे कर चुका है, एक गाना सुना।
1: तो चलिए हम आपकी फरमाइश आप तक लेकर आते हैं, सुनवाते हैं आपको सलमा आगा का गाया फिल्म निकाह का ये गीत।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: यस मैम, नमस्ते
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं दोस्त?
1: मैम। मैं ओम मुर्मू बोल रहा हूँ।
0: ओम मुर्मू, कहाँ से आपने
1: मैम
0: हमें फोन किया है?
1: मैं रानी बगबड़ा से मैंने आपको कॉल किया है।
0: अरे वाह, ओम किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: मैम मैं क्लास 5 में पढ़ती।
0: अच्छा, अभी तो आप गर्मी की छुट्टी हो चुकी होगी,
1: जी मैम, गर्मी की छुट्टी हो गई है।
0: तो इन छुट्टियों में आप क्या कर रहे हैं?
1: मैम इस छुट्टी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और रेडियो सुन रहा हूँ। और फिर जब मेरे खेलने का टाइम है 4 से 5, तो फिर जब मेरे समीर भैया है वो दोस्त है।
0: अच्छा,
1: हालांकि मैं दृष्टिबाधित हूँ, लेकिन वो जो भैया मुझे पूरी तरह से सहायता करते हैं और खेलने में से कुछ करने में सहायता करते हैं। अगर जिस दिन उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है तो मैं अपनी एक नन्ही सी छोटी बहन के साथ खेलता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो दृष्टि बाधित हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो मन की आंखों से इतने मजबूत होते हैं कि पूरी दुनिया वो मन की आंखों से देख लेते हैं।
1: जी मैं बिल्कुल।
0: और देखिए, आपके तो इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, समीर भैया
1: जी
0: हैं आपके, फिर कोई नहीं है तो फिर छोटी बहन है।
1: यस मैम, छोटी भैया मैम।
0: हाँ, गर्मी की छुट्टियों में तो आप खूब इंजॉय करेंगे ही,
1: यस मैम,
0: अभी तो छुट्टियां शुरू हुई है ना।
1: यस मैम, छुट्टी शुरू हुई है।
0: ओम, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपने नहीं बनाया है गर्मी की छुट्टियों में?
1: मैं घूमने का प्लान मैंने बनाया है
0: अच्छा
1: अपने गांव जाने का, भरतपुर में।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है। गांव में कौन कौन रहता है?
1: गांव में मेरे छोटे पापा रहते हैं, फिर छोटे मम्मी दादाजी रहते हैं,
0: अच्छा
1: छोटे दादाजी, एक बड़े दादाजी यहाँ पे हैं।
0: अच्छा यानी पूरा परिवार आप लोग मिलकर गांव में रहेंगे इन छुट्टियों में, तो काफी मजा आएगा, है ना?
1: जी मैम बिल्कुल। दादा दादी की कहानियां सुनना, कुछ डरावनी और कुछ अच्छी सी।
0: और साथ ही दादा दादी सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाते हैं, अपने बहुत सारे जीवन के अनुभव भी बच्चों को सुनाते हैं।
1: जी मैम बिल्कुल। और कुछ कुछ कहानी ऐसा था जो जिस कहानी से हमें वो सीख देते हैं कि बुरा जैसे अच्छा को भी सीख हमें दे देते हैं।
0: बिल्कुल, बुराई से बचकर रहना है और अच्छाई के पथ पर चलते चले जाना है,
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ये इसी का नाम तो जिंदगी है।
1: यस मैम।
0: ओम, गांव की मिट्टी जो होती है ना, बड़ी सौंधी होती है, और वहाँ की आबो हवा भी बेहद खूबसूरत होती
1: यस मैम।
0: है ना?
1: और वहाँ की जो मैंने एक छोटा दादाजी ने मैंने हमने अपने घर मतलब गांव में ग्वालिन पाल रखा है, जैसे बैल और गाय।
0: हाँ,
1: जब मेरे गांव में पिछली बार शादी थी, इसी बार में
0: अच्छा
1: मैंने तो एक जो एक मादा गाय थी वो थोड़ी बड़ी अच्छी थी, इनके एक बच्चा था। तो फिर वो मतलब इनको कुछ हुआ, उनको बहुत भूख लगा था, तो फिर उस गाय ने रात को खाना खाया था,
0: अच्छा
1: इतना उसने खा लिया कि इतना पेट फूल गया, फिर वो दूसरे दिन मर गई।
0: ओहो, सो सैड।
1: फिर
0: इसीलिए पता नहीं चल पाता है ना, जब लोग भूखे होते हैं, या जानवर हो या इंसान, कोई भी, जब भूख बहुत तेज लगी रहती है और खाना मिलता है तो लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कितना खाना है और कितना नहीं, और इसी में प्रॉब्लम आ जाती है।
1: और थोड़ी फिर छोटे दादाजी ने बैलगाड़ी अपने दोस्तों के साथ बुलाया, फिर बैलगाड़ी में उस गाय को चढ़ाया, फिर एक सुनसान जगह में दफना दिया।
0: ओहो, जीवन लीला है, कभी ना कभी तो समाप्त तो होनी ही है, भले कारण कुछ भी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु को कोई कारण मिल जाता है, तो शायद उस गाय को भी कोई कारण मिल गया होगा। कोई
1: मिल
0: बात
1: गया।
0: नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है बच्चे, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना?
1: जी मैम जी।
0: ओम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं हमारे आज के पहले एपिसोड में? हेलो, आपकी फरमाइश में।
1: मैं गाना सुनना चाहूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, मोहम्मद रफी इस गाना को गाया है, और मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाना को लिखा है, और धुन से सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म दोस्ती से।
0: तो चलिए, हम आपकी फरमाइश आप तक लेकर आते हैं और सुनवाते हैं अपने तमाम श्रोताओं के साथ आपकी पसंद का ये गाना फिल्म दोस्ती से।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: सतारा के तुकाराम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं भाई?
1: ठीक है, आप कैसे हैं जी?
0: हम भी अच्छे हैं। और इतनी दूर से जब हमारे श्रोता हमें फोन करते हैं ना, तो हमारी खुशी दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाती है।
1: हमें भी बहुत खुशी मिलती है, हमारा भी फोन इतने दूर लगता है, हमें बहुत खुशी होती है।
0: जी सही कह रहे हैं। देखिए ना, कहता है ना कि हम एक ही देश के लोग हैं, भले अलग अलग राज्यों में बसे हैं, लेकिन देखिए ये रेडियो जो है सारी दूरियों को मिटा दिया है। आज की तारीख में हम ऐप के माध्यम से हर आकाशवाणी को सुन सकते हैं, देश के कोने कोने के आकाशवाणी को हम सुन सकते हैं। 90 सालों की आकाशवाणी की यही उपलब्धि है कि हम देश दुनिया से जुड़ गए हैं एक दूसरे स्टेशन के साथ।
1: जी
0: कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे इतने दूर दराज के श्रोता हमें फोन कर रहे हैं।
1: जी जी जी
0: तुकाराम भाई,
1: हाँ,
0: आपके यहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: क्या हमारे इधर अभी कड़ी धूप है, 37-38 तक पड़ रहा है, कभी कभी 40-42 रहता है।
0: अच्छा, गर्मी में तो तापमान काफी बढ़ा हुआ रहता है, ये बात तो सही है। क्या बारिश होती है कभी कभी उधर?
1: नहीं, अभी तक बारिश नहीं हुई, गर्मी बहुत गर्मी है।
0: ये तो शोचनीय विषय है। कभी कभी बारिश अगर हो जाती है गर्मी के बाद, तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है।
1: जी
0: खैर, ऊपर वाले से ये हम प्रार्थना करेंगे पूरे देश में अगर गर्मी ज्यादा है तो कभी कभार बारिश भी पड़ जाए, ताकि लोगों को थोड़ा राहत मिल जाए।
1: क्या हुआ है इसको, इसका इसकी वजह भी लोग है ना,
0: बिल्कुल
1: लोगों ने
0: सही कह
1: अभी
0: रहे
1: क्या
0: हैं,
1: करते हैं, पेड़ काटते हैं लेकिन नया पेड़ लगाते नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा तुकाराम भाई। और प्रण करना होगा खुद से ही खुद को कि कम से कम अपने जीवन काल में 10 पौधे लगाएं और उनका पालन पोषण कर उसे बड़ा भी करें, तब जाकर
1: जी
0: कहीं वनस्पति को बचाया जा सकता है, जीव जंतुओं को भी बचाया जा सकता है।
1: जी जी जी
0: तुकाराम भाई से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अब फिल्म का नाम है कारवा,
0: इस फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे दोस्त?
1: गोरिया कहा तेरा देश से।
0: बहुत खूबसूरत गीत है ये, तो चलिए
1: कुछ
0: सुनवाते
1: मित्रों
0: हैं।
1: का नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जरूर लीजिए।
1: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी धन्यवाद।
1: हमारे मित्र राजवल जी, सुनील बोदे जी, कांताबाव रामगढ़े जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेड़गे जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटिल सरकर जी, धनंजय चेटेले जी, रमेश जाधव जी, उदय काले जी और रामचंद्र कोरडे जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: तो चलिए, आपके इतने सारे दोस्तों के साथ हम अपने भी तमाम श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म कारवां का ये गीत।

0: हेलो, आपकी
1: हेलो,
0: फरमाइश
1: नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं भाई?
1: धीरज लबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में। कहाँ से आपने हमें
1: देखो,
0: फोन किया है?
1: मैं गांव डेर जिला पाटन गुजरात से बात कर रहा हूँ और रहता हूँ मैं अहमदाबाद में।
0: अच्छा, अहमदाबाद में आप रहते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अहमदाबाद की गर्मी कैसी है?
1: गर्मी 44 डिग्री सेल्सियस है और इस गर्मी में हो सके इतना 12 से शाम 4 बजे तक कहीं बाहर नहीं जाना। अगर जाना है तो मुख पर रुमाल है, सर पर कैप है और
0: जी हाँ,
1: अपने पूरा शरीर ढंका हुआ होकर, अगर व्हीकल में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो अपना शरीर का ध्यान रख के जाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही सुंदर संदेश हमारे श्रोताओं के लिए है। धीरज भाई, क्या करते हैं आप?
1: मैं एक खानगी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी से जुड़ता हूँ। और आकाशवाणी जो खजाना पिरोती है, जैसे खाने में कोई व्यंजन आते हैं, ऐसे आकाशवाणी में जो माहिती इंफॉर्मेशन का जो खजाना है, जो श्रोताओं को पिरोते हैं, तो उसके लिए हम हृदय से आपका आभारी है। हम
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर हमारा रेडियो है तो श्रोताओं से है, श्रोता अगर हमारे साथ हैं तो रेडियो चल रहा है, इसीलिए हम आभारी हैं आपके, जो आप जैसे श्रोता रेडियो से जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए धीरज भाई, देखिए ना कि आकाशवाणी आज अपने 90 साल की यात्रा पूरी कर ली है।
1: बिल्कुल, और ये प्रसारण यात्रा में हम सब श्रोता साथ में जुड़े, हम पुराने हमारे जो भी अधिकारी गण है, अनाउंसर है, उनको अब कई बार याद करते हैं, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम थे जो जिसके बिना हम सुने नहीं रह पाते थे। वही समय पर ये ट्रांजिस्टर यानी रेडियो था, तो रेडियो रेडियो लेकर गांव में, देहातों में किसान भाई और जो काम करने वाले भाई, वो साथ में लेकर जाते थे और वहाँ एक बाजू रेडियो पड़ा हो और एक बाजू काम करते हो, और वो जो कार्यक्रम में जो माहिती इंफॉर्मेशन जानकारी आती थी, तो बहुत अच्छा लगता, हमारा काम भी हो जाता था और जानकारी भी मिल सकती थी।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी, और हमारे
1: जी
0: तमाम श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि पाटन की कलाकृति के बारे में आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: पाटन अगर देखा जाए तो बहुत ऐतिहासिक नगर है, वो राजाओं का समय का पाटन शहर है और एक समय गुजरात का यानी पाटनगर भी था। तो वहाँ एक विशेषता ये है कि वहाँ पाटन के जो, अगर पाटन शहर के बाहर निकले तो वहाँ रानी की वाव है, और रानी की वाव नीचे है, ऊपर नहीं है। वहाँ बिल्कुल बगीचा है यानी कुदरती सौंदर्य है। अगर वहीं जाना है तो उसमें नीचे वावड़ी है बनाई हुई, स्थापत्य कला है, पुराने कोई रानी ने बताई बनाई हुई थी, और इस स्थापत्य कला देखने के लिए बहुत पर्यटक आते हैं भारत के और विदेशों से। और वो स्थापत्य कला मान लो को बहुत साल हो गए, लेकिन आज हमें लगे कल परसों बनाई हुई, इतनी बढ़िया कलाकृति है यानी स्थापत्य कला है।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। एक बात और बताइए कि ये जो वो जो परिधान होते हैं पाटन के, वो तो काफी महंगे आते हैं, उसकी क्या खासियत है?
1: उसको बोलते हैं पाटन के पटोले, तो पटोला यानी जो बहनों के पहनते वही है। और
0: अच्छा
1: उसकी एक खासियत ये है कि बिल्कुल बारीक यानी रेशे से बनाई हुई यानी वस्त्र है, यानी
0: अच्छा
1: साड़ी बोलते हैं वो, पटोला बोलते हैं, बिल्कुल बारीकाई से काम किया होता है उन कारीगरों का, और इसकी कीमत भी ज्यादा है। लेकिन वो कारी जो कला कलागिरी है, वो कारीगिरी उसकी कीमत है। जैसे हम बिहार में जाते हैं, झारखंड में जाते हैं, जो वहाँ की जो एक मूर्तियां है, वहाँ की जो कलाकृतियां, वो देखने के बाद हमें लगता है कि कारीगर ने कितना समय लिया होगा,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये अभिभूत करता है हमें। जो भी ये भी अगर वस्त्र है, स्थापत्य कला है, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: आपने इतनी खूबसूरत जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, ये कभी थमने का नाम नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे विराम लेना जरूरी है। बातों को यहाँ विराम देते हुए हम आपकी फरमाइश जानना चाहेंगे कि आज के हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का?
1: पंख होती तो उड़ाती रे, सहरा फिल्म का गाना है, और इस समय जो भीषण गर्मी है, सहरा फिल्म का लता मंगेशकर का गाया हुआ पंख होती तो
0: जी
1: उड़ा।
0: हाँ
1: इस समय हमारे जितने भी श्रोता, चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी है, आकाशवाणी के कर्मचारी अनाउंसर, जो पक्षियों के लिए जो व्यवस्था की है पानी की, उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं।
0: जी हाँ, और ये बहुत अच्छा संदेश आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो ये संदेश दिया कि जल की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, तो हम अपने श्रोताओं से ये आग्रह करेंगे कि गर्मी काफी बढ़ चुकी है, इसीलिए पशु पक्षी के लिए आप अपने घर के आसपास या छत पर उनके लिए पानी और दाना जरूर रखें।
1: जी,
0: तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर संदेश के साथ आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म सेहरा का ये गीत।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: जी मैं साक्षी से बोल रही हूँ, रीता बनर्जी।
0: रीता बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के ये पहले एपिसोड हेलो आपकी फरमाइश में। रीता जी,
1: जी जी जी असल में मैडम, मेरे हस्बैंड रेडियो बहुत सुनते हैं, मेरे घर में रेडियो बहुत ही चलता है,
0: अच्छा
1: तो रेडियो से मुझे पता चला कि मतलब ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें फोन करना चाहिए। हम लोग नियमित श्रोता है इस प्रोग्राम के।
0: बहुत खुशी होती है हमें जब हमारे नियमित श्रोता हमसे जुड़ते हैं। और देखिए, आज आपने कॉल किया आज के हमारे पहले एपिसोड में और आपका कॉल लग भी गया। रीता जी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ।
0: यानी आप घर
1: मेरे
0: सजाती संवारती हैं और आपके पास तो बहुत टैलेंट है भाई।
1: जी आप ये बोल सकती हैं, घर में दिन भर रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बेड रिटेन है, मतलब उनकी उनका जो है देखभाल करनी पड़ती है मुझे,
0: ओहो,
1: और दिन भर हमारे घर में जो है रेडियो चलता ही रहता है, उसके बीच हम काम भी करते रहते हैं, तो समय भी बीता जाता है, संगीतमय समय हो जाता है।
0: यानी गुनगुनाते हुए सारा दिन आपका जाता है।
1: जी, तो मुझे एक गाना सुनना था।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सफर फिल्म का एक गाना है, जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। तो चलिए, हम आपकी फरमाइश अपने तमाम श्रोताओं के साथ पूरी करते हैं और सुनवाते हैं फिल्म सफर का ये गीत।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: आपकी फरमाइश
0: जी हाँ, कौन बोल रही हैं?
1: जी। मेरा नाम आकृति हुआ
0: आकृति, कहाँ से आपने फोन
1: जी।
0: किया है?
1: मैं आदित्यपुर से बोल रही हूँ।
0: आदित्यपुर से। क्या करती हैं आकृति आप?
1: मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ।
0: अच्छा, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, यानी आपको कला के प्रति आपकी गहरी अभिरुचि है।
1: जी बहुत।
0: इसके अलावा भी दूसरी कलाओं की ओर आपका रुझान है?
1: हाँ, मेरे को पेंटिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है।
0: अच्छा, आपसे जो बातें हुई बहुत अच्छा लगा हमें। आप एक कलाकार हैं और एक कलाकार दूसरे कलाकार की अहमियत को समझता है। जब कला की बात आती है तो कदाचित संगीत पीछे नहीं है।
1: जी,
0: आपने
1: मुझे
0: आज,
1: म्यूजिक का भी बहुत शौक है।
0: अच्छा, आप,
1: मैं काम के बीच बहुत म्यूजिक सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, बेहद खुशी हो रही है आपसे ये जानकर कि आप संगीत के प्रति भी रुचि रखती हैं। तो आज आप हमसे जुड़ी हैं, ये बता सकती हैं कि इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: मैं सुनना चाहती हूँ दे दे प्यार दे टू का बाबुल वे सॉन्ग।
0: तो चलिए आकृति, हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी पसंद का ये गाना और सुनवाते हैं अपने तमाम श्रोताओं के साथ आपको ये गीत।

0: बातें अधूरी है पर वक्त पूरा हो चला है। आपकी चाहतों का ये सिलसिला अब थमने को चला है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन के 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था प्रीतिका। कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। शब बखैर, शुभ रात्रि।
1: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।